कारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

चालबाज मूवी का गाना। इस गाने में श्रीदेवी और सनी देओल जो है वो बारिश पर ये गाना फिल्माया गया है। अब ये दोनों बारिश में भीगे सो भीगे, अब आप ना भीगे, इसलिए फिर से रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ कि भाई छोटी छतरी जो है वो बैग में रख कर ही आप बाहर जाएं, ताकि बीच में अगर बारिश हो जाती है तो आपको जो है दिक्कत ना हो। और साथ में ये भी होता है कि जब बारिश का मौसम होता है ना तो थोड़ा करंट वगैरह लगने का रिस्क रहता है आसपास, और साथ में फिसलने का भी एक रिस्क रहता है। सॉरी, मतलब मैं सुबह सुबह ये बातें कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि आप ट्यूसडे हैं और आप घर से बाहर निकलेंगे काम के लिए, सो ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और भी बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बारिश में भीगने का मन करे तो ज़रूर भीगें, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और खुशी की बात पता क्या है कि धीरे धीरे ना ढेर सारे त्योहारों की लाइन लगने वाली है। परसों यानी 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होगी, यानी कुछ दिन के बाद जो है वो त्यौहार आएंगे, और सावन भी जो है 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे तो सोचकर ही खुशी से गुदगुदी हो रही है। तो हर उत्सव में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड को अपने मोबाइल और रेडियो सेट पर ऑन करके गानों पर झूमें, नाचें और गाएं और जिंदगी का मजा उठाएं। अभी के लिए त्रिदेव मूवी का ये धांसू सा गाना आपके लिए राइट है सिर्फ और सुहानी शो में। मैं पंकज आपके साथ।

पहले मैंने सोचा था कि आपके लिए गाना और प्ले कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी बात कर लेता हूँ ताकि टाइम कम ना पड़ जाए। और मैं आपको ये बताने वाला था कि भाई भोर सुहानी शो का टाइम जो है वो बस अब थोड़ी देर में पूरा होने वाला है और अगले घंटे आपके साथ होंगी मुक्ता अर्पण शो में आपके साथ। तो बाकी भाई मैं आपके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस शो में आप मेरे साथ रहें, और बाकी दोबारा जल्दी आपसे मिलूंगा। और हाँ, बारिश का मौसम जो है उसका खूब लुत्फ उठाइएगा, वाकई मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप पार्क वगैरह में घूमने जाएं सो उसका पूरा मजा लीजिए, बहुत सारी सेल्फीज लीजिए, उसके तो बहुत ही अच्छी फोटोज आती है। खैर, तो इसी तरह आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और मुझे यानी पंकज को दीजिए भोर सुहानी शो से अनुमति। दोबारा आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते।

आदाब सामईन, हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन, आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अषाढ़ महीने की 23, मुताबिक 14 जुलाई सन 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 6:33 और ठीक 25 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की नशरियात का आगाज होता है। मैं आपका मेजबान शबीर खान।

ईचाकाश मुनि श्रीनगर मीडियम वेव अक्सा सख्त शुरह किलो हर्ट्ज तो एफ एम अखत्तर आशारिया पाँच मेगा हर्ट्ज़न पे समीन वुलवेज़ किन प्रोग्रामन हुंद दस्तुलो तो बोजो प्रोग्राम सुबुगाही।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़, और जिन समय ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनके लिए बताते चलें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और इस वक्त जुड़े हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह के साथ, जो

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओह,
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
1: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेंट।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
8: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
7: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित 10 बिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
8: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: سامعین تہ پاؤ چیت زی تھی ازیک مارننگ شو پیم سب بوزان تو بس تہ میزبان شائستہ بخاری تو مے ست شبیر احمد خان
10: جی شائستہ سامعین ماہرین نے کچھ بہترین اور آسان ٹپس دیے ہیں جن سے اوور ایٹنگ کی عادت سے بچا جا سکتا ہے ان میں سب سے

ये छे आकाशवाणी। सुबह 7:05 सपद खबरन हुंद बुलेटिन है चुस बु तजम्मुल अहमद गड आख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पेट। वियतनामस मज अकिस स्पीड बोट हादसे अंदर मार गए तन 15 भारतीय सैलानियन हंद शव चे वापस भारत नामित। तिजारत सन्नतर हिंद वजीर पीयूष गोयलन चे स्पेन किस दौरस दौरान तिजारत सरमाएकारी ते टेक्नोलॉजी में शिरकत इस पर कतबात करमच। सुप्रीम कोर्टन चे हुकूमत हदायत दुतमुत जे स्वकरिन दोन हफ्तन अंदर अंदर भारतीय वायुयान अधिनियम 2014 तहत बनावन आमित जब्त तस ब्रोह कनि पेश। तो BSNL चु माली वरी 2017 गोडनिच सेमही दौरान माली फायदन अंदर 10% हुरर दर्ज करमुत। खबर तफसील सान। वियतनाम किस फू कॉक जजीरस पेट अकिस स्पीड बोट हादसस मज मार गमतन 15 भारतीय सैलानियन हंद शव च वापस भारत नामित। वियतनामस मज कम भारतीय सफारत खानन चु अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज वोनमुत जीम शव आई वियतनाम एयरलाइंस दस अकिस वुडवे मज मुंबई वातनावन। सफारत खानन वोन आंध्र प्रदेश केरला तो तमिलनाडु च रियासती सरकार करन इवन सैलानियन हंद शव पन्न पन्न रियासतन अंदर वातनावन बापत बाकी कार्रवाई। वियतनाम सरकार शुक्रिया करान चु सफारत खानन वोनमुत जि दोख तो गम किस वक्तस मज थो वियतनाम सरकार प्रेथ सोत्रिस पेट पनुन अथवास आयतन। ये कत बाविन लायक जि पत्मि जुमा दो उस अकिस स्पीड बोटस वियतनाम किस

कश्मीरी मौसीकी की सौगात फुलीवन आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर। और हर रोज़ की तरह पयाम-ए-सुबह में आज सूफी सदा सुबह 10 बजे नश होगा। आज के प्रोग्राम में मोमिन सब से मुतल्लिक बात होगी, तहरीर निशात अंसारी।

और सामीन, पयाम सुबह में सुबह 10:30 बजे आप एक लाइव इंटरेक्टिव शो भी समाप्त कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक मेहमान रहता है, हमारे साथ जुड़ता है वो, और अपने सामीन तक वो अपने ख्यालात पहुंचाता है। आज सेहत के हवाले से बात हो रही है, आज का जो दिन है सेहत के हवाले से इसमें बात होती है, और इसीलिए हमने मदऊ किया है एक कार्डियोलॉजिस्ट जो जिनका नाम है इरफान अहमद भट्ट। 10:30 बजे इनके साथ लाइव इंटरेक्टिव शो नश होगा, इनके साथ बात करेंगी शाइस्ता बुखारी और सूफियाना मौसीकी उमर फारूक भट्ट, और साथ ही पेश करेंगे इनसे आप बिलतरती मकामी दुग्गा और मकामी रिहावी समात करेंगे। वक्त रहेगा सुबह 11:30 और दिन में 2:30 बजे। चंद फिल्मी नगमे आपकी समात के लिए पेश होंगे दोपहर 12:10 पर। 12:40 पर प्रोग्राम बज़्म-ए-निस्वां पेश होगा। NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप सुन पाएंगे दिन में 1:10 पर। फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम पेश होता है सपहर 3:00 बजे, पहाड़ी प्रोग्राम 4:00 बजे, पंजाबी प्रोग्राम 4:30 और गोजरी प्रोग्राम शाम 5:00 बजे ब्रॉडकास्ट होता है। देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे गर्मी बाइन हिंद खतर शाम 6:05 पर। प्रोग्राम में पीएम आवास योजना पर बात करेंगे जारिया फारूक। इसके अलावा बशीर अहमद डार बातचीत पेश करेंगे, मौजू है रुंगावन फसल बीमार निश बचाव। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन आप समाप्त करते हैं ठीक शाम 7:00 बजे, और रात 8:00 बजे वक्त रहता है प्रोग्राम वादी की आवाज़ का।

0: تو سامعین یہ تھی جانکاری ہمارے پروگراموں کے حوالے سے جو پیام صبح کے بعد آج دن بھر نشر ہونے والے ہیں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں 7:59:50 ہوئے ہیں, یعنی 8 بجنے کو ہے. یہ وقت ہوتا ہے آکاشوانی دلی سے سماچاروں کا. تو آئیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی سماچار کے لیے.
1: کیچ دا رین, بارش کے پانی کی ایک ایک بوند کو ہمیں بچانا ہے. تو میرا خاص آگرہ ہے برشا کا بوند بوند پانی ہم مل کر کے بچائیں.
2: چل ہے تو ہم ہے. آئیے گھروں آفسوں میں رین واٹر ہارویسٹنگ تکنیک اپنائیں, ریچارج پٹ اور شافٹ بنوائیں, انوپیوگی بور ویلوں کو ٹھیک کریں, جلاشیوں سے گاد نکالیں, ادھک سے ادھک پیڑ لگائیں. اس بارش آئیے جڑے کیچ دا رین ابھیان سے.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया. वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए. पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए. अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा. मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया. और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा. अब समाचार विस्तार से. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया. विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण

0: गई है।
1: पीसकीपिंग हैज बीन अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 300,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: Across 10 of the 11 active missions.
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए

0: व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमरीका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और आरएफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। जमीन प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह, जो सुबह 7:10 से जारी है, 11:30 तक आप इसे सुन पाएंगे। तो अभी समीन हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, आज 14 जुलाई है, इस हवाले से तारीख में आज के दिन खास क्या है वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक सौगात पेश करने वाले हैं।
3: एक

0: मीन ये आकाशवाणी श्रीनगर है और आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पैम एसुब। सामीन, तारीख की बात हो रही है और आज जो पल हम गुजार रहे हैं वो भी कभी तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। चूंकि आप बखूबी वाकिफ होंगे कि हाल ही में कतर के साबिक अमीर शेख हमाद बिन खलीफा का इंतकाल हुआ, जिस पर ना सिर्फ कतर बल्कि दुनिया भर में अफसोस का इजहार किया गया। इनके एहतराम में हमारे मुल्क भारत में भी एक रोज़ा सरकारी सोग मनाया गया। मरहूम की बात करें तो मरहूम एक ऐसी गैर मामूली शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने अपनी क़यादत में कतर की तकदीर बदल दी। आपको बताते चले कि मशहूर नशरियाती इदारा अल जज़ीरा, जिसके हवाले से आप सब बखूबी वाकिफ होंगे, उसके मुस्तहकम करने में भी उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का तो आप पता ही है, आपको आप जानते ही होंगे, अभी तक शायद वो फीफा वर्ल्ड कप आप नहीं भूले होंगे। तो वो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो भी उन्हीं के दौर में उसकी मेज़बानी के हकूक हासिल हुए थे कतर को, जो कि तारीख का हिस्सा बन गया।
1: सही फरमाया शाइस्ता। आज समीन, आज 14 जुलाई है और हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं तारीख के हवाले से भी, और क्या कुछ हुआ है आज, यानी 14 जुलाई को कौन सी ऐसी बात हुई है, कौन कारनामा हुआ है, वो हम अपने समाइन तक पहुंचाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कारनामे आज भी अंजाम दिए गए हैं, लेकिन हम आप तक आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट, एक ज़रूरी एक शेयर करना चाहेंगे वाक़ा तारीख के हवाले से, जो 14 जुलाई का है। हाँ, जिसमें फ्रांस का जो है आलमी दिन, कौमी दिन मनाया जाता है इसमें, जिसे आलमी सतह पर बास्टिल डे के नाम से जाना जाता है। ये दिन फ्रांस की तारीख में एक बहुत बड़े इनकलाब की यादगार है। समीन, 1789 यानी 14 जुलाई 1789 में पेरिस के इनकलाबी अवाम ने बास्टिल नामी शाही किले और जेल पर दावा बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। ये किला उस वक्त के फ्रांसीसी बादशाहों के जुल्म, जबर और मुतलकुल अनान हुकूमत की अलामत समझा जाता था।

जी हाँ समीन, आपने नगमा समाप्त किया किशोर कुमार की आवाज़ में। ये नगमा हमने लिया था फिल्म महान से। समीन, आप तक इस मूवी के हवाले से एक बात पहुंचाना चाहेंगे। इस मूवी के अदाकार थे अमिताभ बच्चन, अमजद खान, वहीदा रहमान, परवीन बाबी। इस मूवी की ख़ास बात ये थी कि ये पहली और वाहिद फिल्म थी अमिताभ बच्चन की जिसमें उन्होंने ट्रिपल रोल किया था, जहाँ वो तीन शक्लों में नजर आए।

0: थे, एक बाप दो बेटे, एक ही फिल्म उन्होंने की है जिसमें ट्रिपल रोल है उनका। बाकी तो अमिताभ बच्चन ने, आप सब जानते हैं कि बहुत सारे फिल्में की हैं, बहुत सारी मूवीज की हैं, उनमें उनका डबल रोल आता है, डबल रोल आया हुआ है, लेकिन ये वाहिद फिल्म है जिसमें उनका ट्रिपल रोल आया था। ये सन 1983 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर हैं रामनाथन और म्यूजिक डायरेक्टर इसके थे आरडी बर्मन। तो समीन, ये इस मूवी के हवाले से थोड़ी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई।
1: पयामे सुबह
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
1: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियत से बात,
2: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगू रोज सिर्फ आपके लिए।
1: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
2: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
1: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
2: सालों का तजुर्बा, मियारी नशरियात की रवायत
1: और आपके एतमाद का नाम आकाशवाणी श्रीनगर,
2: अब एक नए अंदाज में।
1: हर सुबह मालूमात, रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
2: पयामे सुबह। मॉर्निंग लाइव शो
1: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
2: पयामे सुबह।

0: फॉर्म बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये चार रोजा प्रोग्राम टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरार, सरमायाकारी और बैनुल अक्वामी तिजारत में आलमी सतह पर भारत की बढ़ती हुई क़यादत को उजागर करेगा। इस नुमाइश में सनतकार, बरामद कुनंदगान, आलमी खरीदार, सरमायाकार, पॉलिसी साज, बैनुल अक्वामी वफूद, दस्तकार, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले इदारे एक जगह इकट्ठा होंगे। इस तकरीब में हजारों नुमाइश कुनिंदगान, 7,000 से ज्यादा खरीदार और मंदोबीन और 20 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जिनमें अमरीका, बरतानिया, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। हुकूमत के तआवुन को नुमाया करते हुए इस साल 8 रियासतें इस तकरीब की शराकत दार हैं, जबकि 9 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके नुमाइश कुनिंदगान के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले जारी रहेंगे ताकि ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और आबनाए हुरमुज में बेगुनाह शहरियों और तिजारती जहाजों पर हमले करने की उनकी सलाहियत को खत्म किया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो पिकैक्स पहाड़ियों में वाक़ नतांज के करीब जेर ज़मीन न्यूक्लियाई ठिकाने को तबाह कर देंगे, जहां मगरबी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान गैर ऐलानिया तौर पर यूरेनियम अफजूदगी का मरकज कायम कर रहा है। तफसील हमारी नामा निगार से।
2: अमरीकी सदर ने यह भी ऐलान किया कि अमरीका आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेगा और इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों पर 20% चार्ज आयद करेगा ताकि समंदरी सिक्योरिटी के अखराजात पूरे किए जा सके। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि यह नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाजों और उन जहाजों पर लागू होगी जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुज खुली है और खुली रहेगी, चाहे ईरान इससे मुत्तफिक हो या ना हो। उन्होंने कहा कि दिगर ममालिक के तजारती जहाजों को आजादाना आमदोरफ्त की इजाजत बरकरार रहेगी। अमरीकी फौज ने यह भी ऐलान किया कि वह आज रात से ईरानी बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी शुरू करेगी। दूसरी जानब ईरान ने अमरीका के इकदाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आबनाए हुरमुज पर उसका मुकम्मल इख्तियार बरकरार है। ईरान ने वाज़ किया किसी भी सूरत में अमरीका को आबनाए हुरमुज के बंदोबस्त में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मुत्तहिदा अरब इमारात के दो टैंकरों पर आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान ईरानी क्रूज मिसाइलों के हमले के बाद भारतीय हमले का एक रुकन हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। यूएई की वजारत दिफा ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में ये इत्तला दी है। वजारत ने कहा कि इन टैंकरों मुम्बासा और अल बाहिया को ओमान की आबी हदूद में आबनाए हुरमुज की जनूबी गुजरगाह में निशाना बनाया गया। हलाक होने वाला अमले का रुकन मुम्बासा टैंकर में सवार था। जख्मी होने वाले 8 अफराद में से 4 शदीद तौर पर जख्मी हैं। जख्मियों में 6 भारतीय शहरी जबकि यूक्रेन के 2 शहरी हैं। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने कल सऊदी अरब के अबा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। हूसियों के मुताबिक ये हमला यमन के सना बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर होने वाले फजाई हमलों के जवाब में किया गया, जिनके बारे में उनका दावा है कि वो हमले सऊदी अरब ने किए थे। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम ये कार्रवाई कशीदगी में एक नुमाया इजाफा समझी जा रही है, क्योंकि कई बरस कबल सऊदी अरब क़यादत वाले इत्तेहाद की जानिब से हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर हमलों के बाद इस नौयत की सूरत हाल दोबारा सामने आई है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। खवातीन क्रिकेट में कल लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अलावा मैचों

0: की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारत की 21 साल तक की उम्र की जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने अपने बरतानिया दौरे के आखिरी मैच में आज इंग्लैंड में लेलशाल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में बेल्जियम का मुकाबला करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 0-2 की शानदार जीत के साथ वापसी के बाद भारतीय टीम इस दौरे का इख्तिताम जीत के साथ करने की कोशिश करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, भारत और जापान ने आज़ाद खुले और कवानीन पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के लिए अपनी अहदबस्तगी का एदा किया। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 अहम तजुर्बात का मियाबी के साथ मुकम्मल। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरगर्मी तेज, पार्लिमानी कमेटी लखनऊ पहुंची। दौरे का मकसद सियासी जमातों, सरकारी अफसरान और दीगर फरीकों से तजावीज हासिल करना है। यह खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप लिखता है कि वजीर आजम मोदी ने फिजिक्स ओलंपियाड जीतने वाले भारतीय तलबा को मुबारकबाद दी। अखबारात ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के इस बयान को नुमाया किया है कि खवातीन की खुदमुख्तारी विकसित भारत का संग बुनियाद बन चुकी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: یہ آکاشونی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم وقت ساس اخت شرح کلو ہرس تو ایف ایم اخت تراشاریہ پانچ میگا ہرزن پہ سمین لائیو مارننگ شو پروگرام جاری ونکس ووت وق سپانسرڈ پروگرام ہم سفر پروگرام ازک موضوع عالمی ملائکہ مقرر مولانا فیاض احمد ضرو تو ام پروگرام پروڈیوسر سلیم اعجاز کپرا ولی بوزو یہ سپانسرڈ پروگرام
3: سمین پیش خدمت پروگرام ہم سفر یہ پروگرام تہتام واتنوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغے سندر بالا چھتبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر

0: समीन आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त आप जुड़े हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर खान और मेरे साथ हैं शाइस्ता बुखारी। शाइस्ता, और घड़ी इशारा दिखा रही है कि सुबह के 9 बज चुके हैं और ये वक्त रहता है अपने सामईन तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाने का।
1: पेश की जा रही है आज की सुर्खियां।
0: समीन, आज मंगलवार है, 1448 हिजरी के मुहर्रमुल हराम की 28 तारीख और जुलाई की 14 तारीख। मकामी रोजनामों में जो आज की सुर्खियां शाया हुई हैं उनमें ज्यादातर सुर्खियां पहले पेज पर 13 जुलाई के हवाले से शाया हुई है। उनमें सबसे पहले ख्वाजा नक्शबंद साहब दरगाह के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती हसार, मजार शहदा तक रसाई पर कदगन, सियासी जमातों के मुजवजा प्रोग्रामों पर श्रीनगर के कई हिस्सों में जुजवी रुकावटें। इस पर उमर अब्दुल्ला का बयान आ रहा है कि मजार तक रसाई पर बंदिश आरजी, कुर्बानियां आज़ादी के लिए दी गई हैं। इसी हवाले से महबूबा मुफ्ती का भी खराज अकीदत सामने आया है, कहा कुर्बानियाँ तारीख का लाजवाब बाप।
2: बीजेपी का उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपए हद के इज्जत का कानूनी नोट्स, मेम्बरान असेंबली खरीदने के इल्जामात वापस लें या 7 दिन में गैर मशरूत माफी मांगे। एक और अखबार इसी हवाले से लिखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी रसाकशी, कानूनी नोट्स के नाम पर मोहब्बतनामा मौसूल हुआ उमर अब्दुल्ला।
0: जी समीन, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और उसकी सुर्खी, अलहदगी पसंदों की तारीफ करने वाली किताबें, 3 नाशरीन 10 रोजा पुलिस रिमांड में।
2: एक और सुर्खी मेरे सामने है कि कैंसर एक बड़ा आवामी सेहत का चैलेंज बनकर उभर रहा है, चीफ सेक्रेटरी। जम्मू कश्मीर में जामिया कैंसर केयर

0: स्ट्रैटेजी की तैयारी का जायजा। एक और अखबार इसी हवाले से लिखता है, यूटी भर में कैंसर की रोकथाम, तशखीस और इलाज के निज़ाम को मजबूत बनाने के लाह अमल को अमलाने के हिदायत। यूटी भर में जी
1: दिल्ली लाल किला धमाका केस, मुतासिन और मुलजिम की हयातियाती बाकियात ठिकाने लगाने की इजाज़त। एक और सुर्खी इसी रोजनामे से, चेहरे की शिनाख्त का इंतबाह, नुनवन में मुशतबा मिलिटेंट मुआविन गिरफ्तार।
0: रियायती नरकों पर सोने के सिक्के फराहम करने वाला ग्रोह बेनकाब, मफरूर मुलजिमान को पकड़ने और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तफ्तीश जारी।
1: महीनों गुजरने के बावजूद सिकिम्स अलीजान रोड खस्ताहाली का शिकार, मरीजों और मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात नजरअंदाज।
0: बारामुला में रात 2 बजे 3.6 शिद्दत का जलजला महसूस। एक और अखबार की सुर्खी है कि हरमुज में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा, ईरानी फौज।
1: कश्मीर यूनिवर्सिटी में हजरत अमीर खुसरो की याद में मौसीकी की तकरीब, वुसत इकबाल ने सूफियाना कलाम से सामईन को मसहूर कर दिया।
0: बारामुला में जाली अदालती हुक्मनामा पर अदालत के 3 मुलाजमों के खिलाफ FIR, पुलिस की तरफ से तहकीकात के नाम काम को तेज करने का फैसला।
1: धोखाधड़ी के 11 मुकदमात, मतलूब मुलजिम सेंट्रल जेल मुंतकल। एक और सुर्खी इसी अखबार से, सूबाई कमिश्नर का सिक्किम सोरा का दौरा, जेर इलाज यात्रियों को माकूल तिबी इमदाद की हिदायत।
0: जी कैंसर के हवाले से ही एक और सुर्खी है कि चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर के लिए जामिया कैंसर केयर हिकमत अमली की तैयारी का जायजा लिया। यूटी भर में कैंसर की रोकथाम, तशखीस और इलाज के निज़ाम को मजबूत बनाने के लाह अमल को अमलाने के हिदायत।
1: समीन सुर्खियां और भी है, आप हमारे साथ रहिए।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
4: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
3: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग ना हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
4: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
5: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
6: पयामे सुबह
7: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
6: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
7: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
6: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
7: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
6: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
1: समीन आज की सुर्खियां इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से बराह रास्त समाप्त कर रहे हैं और इस वक्त प्रोग्राम जारी है लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और उसकी सुर्खी, बाइख्तियार ख्वातीन कश्मीर में BJP की बढ़ती ताकत का मरकज अशोक कौल, महिला मोर्चा मजबूत बनाने और अवामी राबता बढ़ाने पर जोर।
0: अवाम को मयारी और सस्ती अद्वियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आलमी सेहत के चैलेंजों का मुकामी सतह पर हल तैयार।
1: अवामी शिरकत मौसर हुक्मरानी का बुनियादी सुतून, शहरियों के साथ बाकायदगी से

0: बातचीत लाजमी, आवाम दोस्त हुकुमरानी के लिए पुरअज़म हुकूमत, हुकुमरानी को निचली सतह तक पहुँचाने और हर शहरी की आवामी खदमात तक रसाई यकीनी बना रही है। सतीश शर्मा।
1: जम्मू कश्मीर में दवाओं और खुशबूदार पौधों की तिजारती काश्त का रोड में ज़ेर गौर, हयातियाती मौशियत का मजबूत बनाने का मंसूबा।
0: जदीद ज़रई तरीके अपनाने से ही पायदार तरक्की मुमकिन, डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर।
1: सयाहती मुकामात पर फूड सेफ्टी ड्राइवर्स तेज, 31 नमूने जांच के लिए भेजे गए।
0: पंचायती इंतखाबात की तैयारियां तेज की जाएं, जीएम शाहीन की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत।
1: एक और अखबार जलजले के हवाले से लिखता है कि बारामुल्ला में जलजले के हल्के झटकों से खौफ और हिरास का आलम।
0: तिजारती खबर के हवाले से एक सुर्खी, जम्मू कश्मीर में हुनरमंदों के लिए नए इम्कानात, टेक्सटाइल सन्नत में तरक्की की राह हमवार, पश्मीना और कालीन के लिए सुनहरी मौका, बरामदात और रोजगार में इजाफा मुतवक्का।
1: टाइगोर हाल में सदाए हुसैन प्रोग्राम अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्कद। एक और अखबार लिखता है कि IUST में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के इश्तराक से मुसनफीन के लिए वर्कशॉप का इनेकाद।
0: इनकम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी, जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है।
1: जी एक अंग्रेजी अखबार मेरे सामने है और इसकी सुर्खी है कि NC फॉलोइंग कांग्रेस स्टेटहुड प्रोटेस्ट येट टू टेक कॉल ऑन जॉइनिंग करा।
0: मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और उसकी सुर्खी पहले पेज पर नुमाया तौर पर, अमरनाथ यात्रा ऑन स्ट्रांग फुटिंग। एक और सुर्खी इसी रोजनामे से, हज 2027 एप्लीकेशंस लैग बिहाइंड लास्ट ईयर्स फिगर इन JNK।
1: लद्दाख टू गेट ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स इन ऑल 7 डिस्ट्रिक्ट्स।
0: डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप स्टेटस मस्ट बी मेड थ्रू फेयर लॉफुल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट।
1: लैक ऑफ फीमेल ECG स्टाफ इन JNK हॉस्पिटल्स वरीज वुमेन पेशेंट्स।
0: एक और सुर्खी एक अंग्रेजी रोजनामे से, डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी रेस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
1: जी यहाँ पे मेरे सामने जो अखबार है इसकी सुर्खी यूं है कि भारत तिब्बी तहकीक में नए मयारात कायम कर रहा है, राजनाथ सिंह।
0: एक और अंग्रेजी रोजनामे की सुर्खी, राइजिंग फूड प्राइसेस स्क्वीज कश्मीर हाउसहोल्ड्स।
1: जी एक और सुर्खी यूं है कि भारतीय फजाइया चीन की फजाइया से ज्यादा ताकतवर, मुसलसल 5वें साल दुनिया के 3रे नंबर पर बरकरार।
0: एक और सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, IUST ऑर्गेनाइजेज ऑथर वर्कशॉप इन कोलैबोरेशन विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
1: जी बिल्कुल इसी तरह की एक और एजुकेशनल सिस्टम से जुड़ी खबर है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए दाखिले का आगाज।
0: एक कौमी खबर का रुख करते हैं, उत्तराखंड में मदारिस को सरकारी ग्रांट बंद, नई तालीमी पॉलिसी पूरे मुल्क में नाफिज हो सकती है, किरण रिजिजू।
1: एक खुशायंद खबर है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी पार्क की तामीर में मसरूफ, 15,000 रोजगार के मौके मुतवक्का।
0: आईनी बिल, नीट तनाजा और मुआशी मसाइल, कुल जमाती मीटिंग तलब, मानसून इजलास में गर्मा गर्म बहस का इम्कान।
1: जी एक और आलमी खबर है कि भारत और मालदीव के दरमियान आजाद तिजारती मुहिदे पर पेशरफ्त,
0: मुश्तरका हेडक्वार्टर्स के दरमियान ताउन और दिफाई मशकें, हिंद जापान का हिंद बहर उल्काहिल खिते के लिए अपनी अहद बस्तगी का इआदा।
1: जी एक और खबर है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से DDC शुपैया को मेमोरेंडम पेश किया गया, मुख्तलिफ मांगों के हल के लिए किया गया मुतालबा।
0: एक आलमी खबर का रुख करते हैं, एक उर्दू रोजनामे की, नितिन याहू की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इसराइल में बच गया इंतखाबी बिगुल, 38 बरसों बाद शेड्यूल के मुताबिक होगी वोटिंग।
1: जी एक और खबर मेरे सामने है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में तालीमी साल 2026-2027 के लिए 50 अजाफी MBBS निशस्तों की मंजूरी दी।
0: और आखिर पर लेते हैं एक बैन अक्वामी सुर्खी, ईरान ने अक्वामी मुतहदा की तनकीद मुस्तरद कर दी, हमलावरों को जिम्मेदार ठहराना गैर जिम्मेदाराना तहरान।
1: सामीन से गुजारिश करेंगे कि अखबारात में जो खबरें छपती है उसके साथ साथ बहुत ही इल्मी और अदबी मजामीन भी छपते रहते हैं, उनका भी मुतालिया जरूर किया करें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। تو سامعین یہ تھیں آج کی سرخیاں جو ہم نے آپ تک پہنچائی. اگر آپ ان سرخیوں کی تفصیل جاننا چاہیں گے اس کے لیے آپ کو بازار جانا پڑے گا, اخبار خریدنا پڑے گا اور تفصیل جان

0: से आज 105,335 यात्रियों पर मुश्तमिल 13वां जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इनमें से 1,736 यात्री बालतल के रास्ते गुफा की तरफ जाएंगे, जबकि 3,599 यात्री पहलगाम का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस दौरान आज सुबह 9 बजे तक मजीद 5,412 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा का दौरा करके वहां जैर इलाज श्री अमरनाथ जी यात्रियों की आयादत की। सूबाई कमिश्नर ने यात्रियों को हर मुमकिन सहूलत मुहैया रखने की हिदायत दी। इदारे के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने सूबाई कमिश्नर को जानकारी देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए एक मखसूस वार्ड कायम किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट श्रीनगर में DOPT के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इम्पा और JD के इश्तराक से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरों के लिए कल शुरू हुआ 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम आज भी जारी रहेगा। कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के तहत मुनक़दा इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इंतजामिया से जुड़े अफसरों की सलाहियत साजी को यकीनी बनाना नीज अवामी खिदमात में बेहतरी लाना है। इस तरबियती प्रोग्राम के बारे में इम्पा की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुकैया अमीन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
1: जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज जो है उनको इम्प्रूव किया जाए, जो हमारे कस्टमर्स आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनके साथ कैसे पेश आया जाए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस को ही सिर्फ अपडेट करना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ बिहेवियर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और ह्यूमनली पेश आ जाना कस्टमर के साथ जो बहुत ही माने रखता है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने आज ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। कर्मयोगी के ये मेन कंपोनेंट है। इसमें हमारे आज के प्रोग्राम में तकरीबन 30 पार्टिसिपेंट्स हैं और इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ शुरू किया हुआ है।
0: तरबियत पाने वाली एक ऑफिसर रितिका कोल ने अपने तासरात का इजहार करते हुए कहा,
2: ये प्रोग्राम जो है UT जितने भी अधिकारी है हमारे ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके रिगार्डिंग दी जाती है। ये एक व्यवहारिक संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हमारे सिटीजन्स जितने भी है प्राथमिकता देना जरूरी है हमें उनको, और इन सबसे क्या होगा एक विकसित भारत के लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं।
0: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने तालीमी साल 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के दाखिले के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.1 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
3: یہ چھ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو اخ ساس اکھ شرہ کلو ہرٹس تو ایف ایم اکھ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرٹز پہ شائستہ جی ونکس بجے یہ 9:30 تو یہ 9:30 اس چنگ یہ قشری موسیقی ہند تاز بروہ کال پہ روایت روزمت اس 9:30 ٹائم یت مجھے سن لسنر خاص طر سینئر ریڈیو ہمو آن کورمت کر بجن 9:30 یا کر بجن 10 اس بوزو قشری موسیقی کیا اس یہ موسیقی یہ سان ادبک مطلب یہ سان روح اخ غذا اخ قشر موسیقی امچ قدر زانا اسیر اور اتر اس یہ ادب سون ات من سون سرمایہ سن ام گلوکار گیوان بات پلس یم مصنف لکھان یم سرمایہ ام سانشر ادبک تو یتھ کرو کت آج رات آو منا سون اخ مشہور گلوکار غلام نبی شیخ صاحب تہد تہذ برسی آئی رات منہ سو ات 13 جولائی رات ہس 23 برسی تہذ آمین تو تھی یادس مجھ تہندس یادس مز کرو یہ بات پیش ولی بوزو تو سامعین تو بوزن بالکل

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबिलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश सदान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। सवाल चु ये पैद सपदान जो सोन ये यार कत जाए तो कत मकाम पे गुपित। अमे सवाल जवाब और यान जे हना नुमराव तो पन गर्दन तो नबर पे अंदर पानी वुचक दिल किस अन खानस मज पन्नस मतलूब सन तस्वीर अमा अमे खतर चु शरत यी जे बनी आदम गचे दी तो दुगनार त्राव हवस किस मुनिजोर कुरिस कण लाकम दित तस पुवत सान मकलूब करन तो दिल किस अन खानस खाई कास।
1: मोमिन साहब चु कशर जबान हुंद सु साहिब असलूब सूफी शायर यस जान अरबी फारसी लिख पर तो बसीरत हासिल ऐसमस तसंदिस कलामस अंदर चु जबान हुंद मेचर लताफत तो रस इरफानुक सोज तो अश्कश ते तसंदेव इरफान शारो तल चु ये कत ननान जे सु चुन तिथ इबहामुक कैल यम सत शारुक मफहूम वतलित हेकिन तवे चु सु लुब वनि इबहामुक रवादार पनुन वंद बावनस मन चु मोमिन साहब इस्तियारती तो अलामती इजहारस पेठ चोर तक थवान।
0: मोमिन साहब चु यत कथ पे जोर दिवान जे सुई अका हेकि पन्नस मतलूबस निश वातनच वात बदि करित युस पन्नस बतनिकिस गट कुठिस इरफान के नूर सत प्रसलावि तसुन गुप चु जे अकिस सड़कस पनुन महबूब तेली अथि यवान यल सु पनुन खूनि जिगर चांगिन मज जलित जूल करुन जानान आसि तो यह तेली मुमकिन यल जन बनी आदमस अश्क चंजन सीन दारन पितुर आसि।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोझान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे तक नशर सब्दान।

0: श्री कश्मीर स्टेट मेडिकल साइंसेज से किया। तो 2015 में मैंने डीएम कंप्लीट किया और तब से 11 साल हो गए। तो मैं अभी पोस्टेड हूँ एसएमएच हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। वहाँ हम सर्विसेज दे रहे हैं कार्डियोलॉजी की।
1: जी बहुत खूब। चूँकि डॉक्टर साहब कह सपदान दिल के अमराज की साधन अल्फाज मज वो गान सामीन कि ये दिल कथ पे सैनिस जिसमानी निज़ाम मज अहमियत थावान तो कथ कन कम कर
0: दिल सारे खुद अगर वन वाइटल आर्गन वन कह वाइटल आर्गन ये वन ब्रेन किडनी इथे कन हार्ट वाइस वाइटल आर्गन सो वाइटल आर्गन मज़ सारे खुद इम्पोर्टेंट आर्गन जो दिल तेज दिल पम्प बॉडी मज थ अल्लाह ताला बनोमुत जो तमें ब्लड सप्लाई तमाम आर्गन मज नमन नमन तान हर कुन मसल मज बोन एवरी प्रेथ कुन तानस मज वातान ये ब्लड अमे सत खन ऑक्सीजन बाकी चीज मिनरल्स वाइटमिन्स ये हार्ट पम्प कर
1: बिल्कुल
0: ये हार्ट पम्प कर तेल पको ये हार्ट पम्प कर तेल करो दुनिया काम यह ब्रेनस तवान सन फंक्शनस मेनटेन सन कॉन्शियसनेस यानी कि हुशार आसान ये ब्रेनस ब्लड वा सो यह सारे खुद वाइटल आर्गन बॉडी मज दिल तो अमि दिल से रश कर
1: बिल्कुल सही वनो तह डॉक्टर साहब चूँकि आज कल तुम वुचान कि चपर व हार्ट अटैक्सन रेट बढ़ अगर तुम सोशल मीडिया पे नजर त्रो भरतमो खबरों सन कि लकटन लकटन नौजवान हार्ट अटैक सपदान अमु क्या बुनियादी वजह
0: हार्ट अटैक कि मैं अमे ब्रोट कर्ज दिल वाइटल आर्गन यानी कि अहम तान जिसमस मज सप्लाई कर ब्लड मगर अनफॉर्चुनेटली बदकस्मती सान अच्छे पे पान ब्लड सप्लाई जरूरत तिम वन तिम रगन जन सप्लाई कर अमचन तानस अमकिस मसल तथा वनान कॉर्नरी आर्टर बदकस्मती सान कॉर्नरी आर्टरी आसान फ्रेजाइल यानी कि इन हेकान अस्म चर्बी लगित प्रोन टू डेवलप द डिजीज इन हेकान अंदर चर्बी खसित इन जल्दी दोद गाहिर ठीक अगर वन यह दोद ये अंदर यह चर्बी अमक रगन मज ईा ज्याद गई जि ब्लड सप्लाई हेक मेनटेन गनिस हार्टस कह अमस वा पुन ऑक्सीजन टाइमस पे कह यूत अमे जरूरत ईच डिमांड ऑक्सीजन या खुराक डिमांड या कुन तीज डिमांड यह सेटिसफाई हार्ट अमि निश कह तो अत लगान एक किस्म जख्म अत या लगे जख्म नत ग तीस चर्बी अंदर टाइट जी कर प्रसपिटेट हार्ट अटैक
1: बिल्कुल
0: तो अमिक वजूहत वह दुनिया मज़ दुवंजन कंट्रीजन मज स्टडी गई अगर वो रिस्क फैक्टर ब्राजील मजा रिस्क फैक्टर अमेरिका रिस्क फैक्टर अगर कम्बाइन थो ये अगर दुवंजन कंट्रीजन मज या अफ्रीकन अमेरिकन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट वो एशिया यूरोप ठो चीज़ों सठो तो नव नव चीज़ों सकान कॉमन रिस्क फैक्टर्स ये हार्ट अटैक ग तथ मज नंबर वन जन सोन ये शुगर बेमार डायबिटीज डायबिटीज अमिस पेशेंटस डायबिटीज तमें रिस्क हार्ट अटैक तमिस अंदर जंग लगान तिम रगन मज चर्बी खसान तमिस अगर ब्लड शुगर रोज कंट्रोल कहें यह हेकान कर प्रसपिटेट हार्ट अटैक दम चीज अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर ठीक मगर अगर अनकंट्रोल रोज बियॉन्ड रेंज रोज यह हेकान कर हार्ट अटैक त्रम चीज सिगरेट नोश यानी कि सिगरेट स्मोकिंग कर सिगरेट स्मोकिंग सिगरेट तो डेंजरस कह लेवल ऑफ स्मोकिंग सेफ क्या प्रसपिटेट हार्ट अटैक
1: बिल्कुल चूँकि तुम नौजवान मुतलिक
0: तथ चीज त्रे चीज गई चूरम चीज एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि मोटापन इंसान अम्स यार नबर अमिस प्रसपिटेट हार्ट अटैक गुजम चीज ये जन सिडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी कि ज्यादा वॉक कर कहें मूव अराउंड कर कहें इन मज ज्यादा हार्ट अटैक गम पत डाइट डाइट अगर खेवान फास्ट फूड बाकी चीज फूड तो असल ऑर्गेनिक डाइट खेवान अमे अलावा वुचना आमुत चर्बी खूनस मैं कोलेस्ट्रॉल तमिक मकदार एपो वन एपो बी रेशो सब वो अगर सूह डेरेंज आल डी एल कोलेस्ट्रॉल डेरेंज आ हार्ट अटैक तमें मजीद सारे खुद अहम साइको सोशल स्ट्रेस यानी कि जहनी दबाव इन लुक आसान जहनी मरीज या इन जहनी दबाव

0: डॉक्टर साहब नगमा हो गया, लेकिन नगमा सुनने के दौरान मेरे जहन में एक सवाल आया जो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। क्या दिल का ताल्लुक वाकई इमोशन से होता है या महज ये एक शायराना तखयुल है?
1: जी बिल्कुल, इसके बात करूँगा कि हार्ट जो आसान सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर जब छो एस कुम तान जो सेंसिटिव ऑर्गन यानी कि अलग डायरेक्ट इफेक्ट पे सोरे ब्रेनस मे सो हमारी सोच से ही सब कुछ है जो हमने सोचा हमने रिएक्ट किया
0: जी जी।
1: लेकिन टारगेट ऑर्गन जी तान अक गई सन अंदरम तो बे गई दिल अगर तुम वो तुम वो पेशेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम
0: IBS
1: अम सरूरी दिल्च धड़कन तेज तेज अंदरम सेंसिटिव टू इमोशंस सिमिलर हार्ट सेंसिटिव टू इमोशंस दैट्स वाई साइको सोशल स्ट्रेस यानी कि जहनी दबाव पे अगर पो हार्ट अटैक पेशेंटन हे तुम क्या दिल गई तमें हार्ट अटैक गो 90% लोगों ने कहता नुकसान गो यह गो गि गो मसल इत थोड़ा लड़ाई गई थोड़ा गि हूँ माहौल उस गि ठीक निकाज ब्रेन पन पान बचा तो अमी इफेक्ट पे हार्टस पे सो कह इमोशंस एकदम दिल से थप
0: लगानी सही। डॉक्टर साहब जो टर्म अक्सर कन्फ्यूज कर सो हार्ट अटैक तो कार्डिक अरेस्ट इन क्या डिफरेंस समझ तो
1: हार्ट अटैक अख यम दिल धड़कन यानी कि हार्टस दग कर तो ब्लड सप्लाई गज बंद हार्टस पानस गज ब्लड सप्लाई बंद यानी कि कह रग गज बंद अच्छे हार्ट त्रे रग आकस रग थोप यानी कि तथ मज पक ब्लड ब्रोट कहीं तो जन यह तान जन यह पार्ट हार्ट यह करना कम ही पत तो यह त्रा कर इंसानस अटैक हार्ट अटैक
0: जी जी।
1: कार्डिक अरेस्ट गो लास्ट स्टेज अमुक यानी कि अगर यह पेशेंट बचो ट्रीटमेंट टाइमस पे गई ना ट्रीटमेंट तम सात ग पूरा काम त्रा कर सोरे हार्ट तो अम सा पमस अरेस्ट ग तो ब्रेन ब्लड सप्लाई वातानी पेशेंट हम डेथ गई हार्ट अटैक सी यूत यह हार्टस मे मसल तराब तम सार्टस ग आब जमा टमपन तम सो चीजों सब ग हार्ट अटैक कार्डिक अरेस्ट इरिवर्सिबल यानी कि यह सिजेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट हेकान CPR से वापस तन मगर हार्ट अटैक यानी कि दिल ब्लड सप्लाई गई बंद पार्ट त्रा कर अटैक
0: सर ब्या सवाल पुछ कि अक्सर आमुत वे कि विंटरन मे वा वंद कालस मे हार्ट अटैकन रेट ज्यादा बढ़ान तथ क्या वजह
1: बिल्कुल अगर तुम वो विंटर एंड समर डिफरेंस हार्ट अटैक एडमिशन मैं सो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल SMHS कैजुअलिटी मे या शेर कश्मीर मेडिकल साइंस मे विंटरस मे ग अटैक ज्यादा बनस्बत समर एडमिशन रजिस्ट्री जी वो हार्ट अटैक आई दोस आज आई आज कम तम यह डिफरेंस कोविड ब्रोट एविडेंट वहीं कम गोज कोविड पत गई थोड़ा कम ती क्या वह वह हूँ वह हिची कथ लगभग लगभग 60-40 या 70-30 वन जिसम गरम रखने खातर हार्टस पे कर ज्यादा वर्क लोड पे हार्टस पे ज्यादा अमिस पे सन तमाम ऑर्गन थोन टेम्परेचर थोन मेनटेन ये नबर से नारा द्राय नबर सुबह मॉर्निंग मज या कह बुजुर्ग द्रा नबर अमिस अमिस पाई यह अंदर गरम माहौल मा सर्द माहौल अमिस सो विंड वे यानी कि विंटर विंड वन सो सो डिमांड बढ़ावान ऑक्सीजन हार्टस पे दबाव ज्यादा पे वर्क लोड ज्यादा पे सो स्टेबल डिजीज बिकम बना अनस्टेबल तो इन प्रसिपिटेट हार्ट अटैक दैम चीज हार्ट की रग सुगड़ान विंटरस मे तंग एक्सपोजर टू कोल्डस मन अटैक ज्यादा विंटरस मे बनस्बत समर समरस मे थोड़ा प्रिवेंशन आ मतलब गो नब हार्ट अटैक गई तो अगर तुम वो इंडिया मे सारे खुद ज्यादा हार्ट अटैक गगभग कम से कम 35-36 लाख हार्ट अटैक मैसिव पर ईयर वन अगर वो फिगर्स क्या तुम वो कचा पापुलेशन सानी कंट्री मे तो तमें मतलब गो रिस्क फैक्टर ज्यादा।

0: आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी खबरों का बुलेटिन नेस्ट्रो का खबरों का जरा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का यह अंतिम मैच है। भारत ने

0: Indian Standard Time, and that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है. मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. बारह बजकर 10 मिनट हुए हैं. आई समाप्त करें चंद फिल्मी नगमें.

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे, आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वी 268.6 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीर।

आदाब, 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज़ अख्तर। भारत ने 2028-29 के लिए अक्वामे मुतहदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर के चुनाव के लिए बाज़ाबिता तौर मुहिम का आगाज किया है। अक्वामे मुतहदा हेडक्वार्टर पर गुज़श्ते शाम भारत की उम्मीदवारी को लॉन्च करने के मौके पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने भारत के शांति नजरिए को मुतारिफ किया, जिसका मकसद आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़वाबित के तहत जामे तरक्की का हुसूल है। भारत इससे पहले 8 मरतबा अक्वामे मुतहदा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर रह चुका है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में MBBS की इजाफी 50 निशस्तों को नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी मिलने पर सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतू और इन दोनों कॉलेजों के फैकल्टी मेंबरान और दीगर अमले को मुबारकबाद दी है। वजीर आला ने कहा है कि तदरीसी साल 2026-27 से इन कॉलेजों में इस इजाफी इनटेक को मंजूरी मिलने से यूटी में तिब के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के सरकार के आजम की अक्कासी होती है। जम्मू में कल कई अवामी वफूद ने खुराक व सिविल सप्लाईज के वजीर सतीश शर्मा के साथ मुलाकात करके अपने मुतालबात उनकी नोट्स में लाए। वजीर मौसूफ ने जायज अवामी मुतालबात को मरहलावार बुनियादों पर पूरा करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की जामे तरक्की और आम लोगों की खुशहाली को यकीनी बनाने की वादाबंद है। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो तरक्याती अमल में शराकतदार बनकर अपना किरदार निभाएं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में कल शाम तक लगभग 3 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे। आज भी हजारों की तादाद में यात्री पहलगाम और बालतल के रास्ते गुफा पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 805,335 यात्रियों पर मुश्तमिल 13वां जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इनमें से 1,736 यात्री बालतल के रास्ते गुफा की तरफ जाएंगे, जबकि 3,599 यात्री पहलगाम का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस दौरान आज 10,401 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बारिश के पानी को जमा करके इसे मुअस्सर तौर इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। बकाया हयात में पानी की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने इस मॉनसून के दौरान कैच द रेन मुहिम को बड़े पैमाने पर वसत देने की जरूरत पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर में 100 दिनों पर जारी नशा मुक्त अभियान अपने आखिरी मराहल में है। इस सिलसिले में सिविल और पुलिस इंतजाम के अहतमाम से बेदारी प्रोग्रामों और मनुष्यत मुखालिफ कार्रवाइयों का सिलसिला शद्दमत से जारी है। जिला इंतजामिया पुलवामा के अहतमाम से डिग्री कॉलेज त्राल में मनुष्यत मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए मुंतजमीन की सराहना करते हुए नौजवानों से ताकीद की कि वह मनुष्यत से दूर रहकर तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा लें। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने जिले में मिशन युवा की अमलावरी में मजीद बेहतरी लाने और इस स्कीम के तहत मुकर्रर किए गए अहताफ को बरवक्त हासिल करने की हिदायत दी है। जिला सतह की अमलावरी कमेटी की एक मीटिंग में उन्होंने मिशन युवा के तहत मुख्तलिफ मामलात को मंजूरी देने और कर्जों की फराहमी के अमल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वसूल की गई 267 दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने तहसील ऑफिस कुलगाम का दौरा करके वहां जमाबंदी और दीगर दस्तावेजात की डिजिटाइजेशन के अमल का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि डिजिटाइज किए गए दस्तावेजात जमीन सुधार पोर्टल पर दस्तियाब हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुतलकीन इस रिकॉर्ड में पाई जाने वाली किसी भी गलती की तहसीलदार की सतह पर तस्दीक करा सकते हैं। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने तहसील ऑफिस की नई इमारत पर जारी काम का भी जायजा लिया। बाजारों में महफूज और साफ सुथरी अशियाए खुर्दनी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की फूड सेफ्टी विंग ने अपनी सरगर्मी में तेजी लाई है। मजकूरा विंग की कई टीमों ने कल श्रीनगर, पहलगाम और सोनमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में 56 होटलों का मुआयना किया। इस दौरान 31 जगहों से खाने पीने की अशिया के नमूने जाँच के लिए हासिल किए गए, जबकि कानून के खिलाफ वर्जी की पादाश में कसूरवारों पर 10,500 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। सामाजिक बहबूद महकमे के अहतमाम से श्रीनगर के ललदत अस्पताल में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्द हुआ। इस प्रोग्राम में हामिला खवातीन को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अगराज व मकासद और फवायद के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मुस्तहिक खवातीन को योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल के बारे में तफसीलात देते हुए इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा करने की तरगीब दी गई। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा बैन अलावा क्रिकेट मैचों की सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। इस सीरीज का पहला मैच आज बरतानी के शहर बर्मिंगम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त

0: के मुताबिक सपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। सीरीज का दूसरा मैच 16 जबकि तीसरा मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर, खुर्शीद अहमद बोजनग खबर। भारतन चु 2018-2019 बापत अकवा मुतहदा सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल मेम्बर के चुनाव खातर बाजबत पे मुहिम दस तुलमुत। अकवा मुतहदा किस हेड क्वार्टरस पे रात शामन भारत उम्मीदवारी लॉन्च करने किस मौकस पे कोर खारिज वजीर डॉक्टर एस जयशंकरन भारत शांति नजरिया मुतारिफ यमुक मकसद आलमी अमन इस्तेहकाम बापत जबतन तहत जमे तरक्की प्रावन छ। भारत अम ब्रो 8 फिर अकवा मुतहदा कौंसल गैर मुस्तकिल मेम्बर रूदमुत। वजीर अला उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जमिस अंदर MBBS चन हुरेमान 5 सीटन नेशनल मेडिकल कमीशन मंजूरी मेलस पे सेहत तबी तलीम हिज वजीर सिकिन आयतु तो इन कॉलेजन हंद फैकल्टी मेम्बरन तो दुमिस अमल मुबारक कर्मुत। वजीर अला वन जि 2017 पे इन कॉलेजन मं हुरेमान इनटेकस मंजूरी मेलन सूटी मं सेहत बुनियादी ढांचे मुस्तकम करने के सरकार की अजमच अक्सी सपदान। रात हिंद जमि कैचों अवमी वपदो खुराक सिविल सप्लाईज किस वजीर सतीश शर्मा मुलाकात करित पन मुतालबे तिज नोट्स मज जायज अवमी मुतालब मरहलवार बुनियादन पे पूर कर यकीन दिवान वो वजीर सरकार जम्मू कश्मीर कुलम तरक्की तो आम लूकन हज खुशहाली यकीनी बनाने वाद बंद तमो लूकन तकीद कर्म तरकीती अमल मं शरकत दार बनित वाल तम पन किरदार नख। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिलस मं रात शाम ताम अल पल 3 लाख यात्रियों गुफाओ दर्शन कर्मुत। आज तास बद यात्री पहलगाम तो बाल तल वत गुफाए वातान अत दौरान गो आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप पे 5,335 यात्रियों पे मुश्तम त्रोहम ग्रुप श्रीनगर कुन रवाना इमो मं 1,736 यात्री बाल तल वत कल 3,599 यात्री पहलगाम कि गुफाए वातन अत दौरान कोर आज वनुक ताम मजीद 10,401 यात्री गुफाए दर्शन। वजीर अजम नरेंद्र मोदी रूद आब जमा कर सरदार तरीक इस्तेमाल करने की जरूरत पे जोर दुत जिंद रोजन बापत आबच अहमियत वतलवान दुमो मानसून दौरान कैच द रेन मुहिम बार पैमान पे वसत दिन की जरूरत पे जोर। जम्मू कश्मीर मं दोन पे जारी नशा मुक्त अभियान पखरी मरल मं सिलसिलस मं सिविल तो पुलिस इंतजामिया के अहतमाम बेदारी प्रोग्रामन तो मनशात मुखलिफ कारवाइन सिलसिल शदमान जारी। पुलवाम के जिला इंतजामिया तरफ आव त्राल किस डिग्री कॉलेज अंदर मनशात मुखलिफ बेदारी प्रोग्राम मुनद कर असम्बली मेबर त्राल रफीक अहमद नायक खास पे यह प्रोग्राम मुनद कर बापत इंतजाम कर वाले हिंद तारीफ कर वो तमो नशे नश दूर रूजित कर तम तमीरी सरगर्मी मं शिरकत। गांधरबलिक डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर दुत जिलस मं मिशन युवा च अमलावरी मं मजीद बेहतरी अन तो अत स्कीम तहत मुकर कर आम निशान वक्त पे हासिल कर हिदायत जिल सोत्रीच अमलावरी कमेटी हिज अकिस मीटिंग मं हमो मिशन युवास तहत मुख्तलिफ मामलन मंजूरी दिनस तो कर्जन हिज फराहमी हिज अमल जायज मीटिंग दौरान आये वसूल करना आम तेन ज़ात दरखास्त मंजूरी दिन। कुलगामिक डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलमन हिज तहसील आफिस कुलगामिक दौर कर जमाबंदी तो दुमिन दस्तावेजन हिज डिजिटाइजेशन अमल साम तमन आव वन डिजिटाइज कर आम दस्तावेज जमीन सुधार पोर्टल पे दस्तियाब अत मौक पे वो डिप्टी कमिश्नर तालुक दर हकन अत रिकार्डस मं सपज मलती तहसीलदार सोथरस पे शीर पत हूँ डिप्टी कमिश्नर तहसील आफिस नवे इमारत पे जारी काम तायज। बाजरन मं महफूज तो साफ खन चीजन दस्तियाबी यकीनी बनाने बापत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी शाखन पन्नी सरगर्मी तेज करम मजकूर शाख क्यों कैचो टीमों कोर रात श्रीनगर पहलगाम सोनमर्ग हिंदन मुख्त इलाकन अंदर 15 होटल मुयन यह दौरान 31 जायों पे खन चन कन चीजन हंद नमून जांच कर बापत हासिल कर आये जन खिलाफ वर्जी कर वाले 10,500 रुपये जुर्मान कर आव। समाजी बहबूद महकम के अहतमाम सपुद श्रीनगर किस ललद अस्पताल मं जानकारी प्रोग्राम मुनद अत प्रोग्राम मं आये हमल खौतन प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हिंद मकसद तो फायदन मुतलिक जानकारी दिन अत मौक पे आये हकदार जनान रजिस्ट्रेशन अमल मुतलिक तफसील दिवान अम स्कीम हिंद पूर फायदे तुलने बापत कल कड़ने। بھارت تو انگلینڈس درمیان ترین اکہ دہ کہ بین الاقوامی کرکٹ میچن ہزی سیریز ہند آغاز از

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आया है। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है, इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुए स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

और FM 103.5 MHz पर 1:10 हुए हैं। आयुष्मात करें NCERT द्वारा तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की। ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं
2: जी।
3: इनमें वे लिखते थे

0: व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोता आपको बता दें कि किलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने किलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये किलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते

0: हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहां से कहां तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
5: हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
5: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया
4: कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली

0: क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
0: जंगल के साथी।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला।

0: ला था या उसका कोई साथी था?
1: बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
2: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
2: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
0: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
2: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
0: हरी हरी वो घास था खाता।
2: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
0: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम

0: रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे फिर दादी माँ?
0: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

समय अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे उमंग, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय हमारे प्रोग्रामों के बारे में एक इतला समाप्त करें। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताज़ा शुमारे की रिकॉर्डिंग कल यानी बुधवार 15 जुलाई को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक होगी। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है कैंसर से लड़ रहे बीमारों का ख्याल कैसे रखा जाए। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदु किया है नामवर मौलिज डॉक्टर अबरार रसूल को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिज से मौजू की मनासबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो राबिता करें फ़ोन नंबर 0194-24-80-364 पर। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा कल यानी बुधवार 15 जुलाई को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक। यह थी हमारे प्रोग्रामों से मुतालिक एक इतिला।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नेश होगा। खबरों का जरा सा इंतज़ार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत ने आबनाए उर्मुज में हालिया हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अकवाम मुत्तहदा रुकनियत के लिए फलस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के दो रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क्यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत

0: शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने आबनाए उर्मुज में मुत्तहदा अरब अमारात के परचम बरदार दो तेल टैंकरों पर एक ईरानी मिजाइल हमले के बाद आज ईरानी मिशन के नायब सरबराह मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। जनाब हुसैनी को अफसरान से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में वजारत खारजा के सदर दफ्तर से रुख्सत होते हुए देखा गया। यह सिफारती कदम मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा की तरफ से इस दावे की तस्दीक किए जाने के बाद उठाया गया था कि टैंकरों मुंबासा और बाहिया पर किए गए हमलों में एक भारतीय शहरी के हलाक और हमले के 8 अरकान के जख्मी होने का दावा किया गया है। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी बाशिंदे शामिल हैं। 4 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीन की मेंबरशिप और 2 रियासती हल की हिमायत की है। कल ब्रुसेल्स में फ़िलिस्तीन अतियाकारों के ग्रुप की दूसरी वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी श्री प्रिया रंगनाथन ने यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत फ़िलिस्तीनी अवाम का तवील अरसे से शराकत दार रहा है। उन्होंने फ़िलिस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों समेत भारत की तरक्याती इमदाद को उजागर किया। मोहतरमा रंगनाथन ने कहा कि भारत के प्रोजेक्ट मांग पर मबनी हैं और सेहत, तालीम, सलाहियत साजी और रिवायती तरबियत से मुतालिक हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे CETA पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस अहम मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात पर बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे भारत और बरतानिया के दरमियान दिफाई शराकतदारी में गहराई और अवाम के लिए खुशहाली लाने के दोनों मुल्कों के मुश्तरका अज़्म का इजहार होता है। इस तारीखी मुआहदे के लिए मई 2021 में तौसीशुदा तिजारती शराकतदारी और 2030 के भारत बरतानिया खाके की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था, जिसमें तिजारत को 2030 तक दुगना करके 100 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक ले जाने का निशाना तय किया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत बरतानिया तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद आलमी सतह पर एक दयानतदार, मुस्तहकम और मुसाबकती मईशत बनने के भारत के सफर की जानिब एक बड़ा कदम है। यह मुआहदा आवाम पर मरकूज है, जिसके तहत पूरे समाज को फायदा हासिल होंगे। भारतीय बरामदकारों को बहुत से बुनियादी शोबों में बरतानवी महसूलात मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने से बड़ा फायदा होगा। अभी तक डब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समुद्री मसनूआत में 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग और आटोकल पुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और जूते चप्पल पर 16% तक, कपड़ों और मलबूसात पर तकरीबन 12% तक टैक्स दिया जाता है, लेकिन अब इन सभी चीजों पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया जाएगा। इससे बरतानिया की मार्केट में भारतीय बरामदात की मुसाबकती सलाहियत में खातिरख्वाह इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए मौके पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टैक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत टैक्स वजीर आजम का विजन है। उन्होंने बताया कि यह तकरीब अब एक बैन अल्कामी शक्ल इख्तियार कर गई है और हर साल इसमें नुमाइश करने वालों, खरीदारों, फरोख्त करने वालों और उसको देखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल इस तकरीब में 130 मुल्कों के 60,000 खरीदार और नुमाइश करने वाले शिरकत कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत टैक्स में MSMEs और एंटरप्रेन्योर भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ किए गए आज़ाद तिजारती समझौते भी टेक्सटाइल शोबे को फायदा पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: इफ्तिदाई तकरीब में अलग अलग रियासतों के टेक्सटाइल वज़रा और टेक्सटाइल के वजीर मम्लिकत पवित्र मार्गरेटा ने भी शिरकत की। इस तकरीब में टेक्सटाइल

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नकमी। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए। आकाशवाणी श्रीनगर जबरजित 3 मिनट सपद बोले समय सोफियान मौसकी बुजो सदाकार्य उमर फारूक बढ़ती हिंसा थी यमनज बुजो इस मकाम रिहा हुई

फौजी भाई, वो फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से। इस नगमे को गाया है लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी का लिखा नगमा है और लक्ष्मीकांत पैरेलाल की मौसिकी।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने लता मंगेशकर को सुना। अब आइए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुनते हैं। यह है फिल्म जीवन मृत्यु। इस नगमे को तहरीर किया है आनंद बख्शी ने और शुरू में डाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जी दोस्तों, फिल्मी नगमे जारी हैं। पहले हमारे प्रोग्राम के बारे में एक इतला समात करें। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताज़ा शुमारे की रिकॉर्डिंग कल यानी बुधवार 15 जुलाई को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक होगी। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है कैंसर से लड़ रहे बीमारों का ख्याल कैसे रखा जाए। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदु किया है नामवर मौलिज डॉक्टर अबरार रसूल को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिज से मौजू की मनासबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो राबिता करें फ़ोन नंबर 0194-2480-364 पर। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा कल यानी बुधवार 15 जुलाई को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक। ये थी हमारे प्रोग्रामों से मुतालिक एक इतला।

जी दोस्तों, आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में, यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में।

जी दोस्तों, अब आइए कल्याण जी आनंद जी की मौसिकी में इंडीवर का लिखा नगमा सुनते हैं। यह है फिल्म धर्मात्मा, आवाज़ किशोर कुमार की।

0: जी दोस्तों, फिल्मी नगमे जा रही हैं पहली वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है।

जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको बताते चले, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन। इसके अलावा आप हमें DTH या AIR लाइव मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। जी दोस्तों, प्रोग्राम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर पे अब आइए गुलामी फिल्म से नगमा सुनता है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

जी दोस्तों, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए इस नगमे के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ जाता है। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सफर के 3:50 हो रहे हैं। अब आइए उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शबीर उज़्ज़मा। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा को सब्र तहम्मुल, अकीदे और रूहानी तौर तकवियत पाने जैसे अकदार की मुनफरिद अक्कास दिया करार। यात्रा खुश असलूबी से जारी, अब तक 3,20,000 से जायद श्रद्धालुओं ने दी गुफा में हाजिरी। जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू में 50-50 एमबीबीएस नशस्तों की नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी, तिब्बी शोबे में एक अहम संग मील, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन मुहिम को तकवियत देने पर दिया जोर। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा सब्र तहम्मुल, अकीदे और रूहानी तौर तकवियत पाने जैसे अकदार की मुनफरिद अक्कास है। अंग्रेजी रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर के शायशुदा एक तफसीली मजमून में एलजी ने कहा है कि यह यात्रा यकजहती, आपसी रवादारी और एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने का सफर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम लोग इस यात्रा के लिए अपना भरपूर तआवुन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तबकों और अकीदों से ताल्लुक रखने वाले मकामी लोग साल हर साल से यात्रियों का खैर मकदम करते हैं और यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए अपना कलीदी रोल अदा करते हैं। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की निजामत और इसके हुजूम में काफी बदलाव आया है और वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में यात्रा के लिए बुनियादी ढांचे को काफी तकवीयत हासिल हुई है और यात्रियों को अब पहले के मुकाबले में मयारी सहूलियात दस्तियाब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान पवित्र गुफा की अजमत को बरकरार रखने, नीज इस हिमालयी खत्ते में हयातियाती तनाव को बरकरार रखने की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है और अब तक लगभग 3,20,000 यात्रियों ने पवित्र

वहां मैं शिवलिंगम के दर्शन किए। बेशतर यात्री दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट गए हैं और वो यहाँ की खूबसूरती और मेहमान नवाजी से मुतमईन नजर आ रहे हैं। दरी असना जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से आज सुबह 5,335 यात्रियों पर मुश्तमिल 13वां जत्था वादी पहुंचा। इनमें से 1,733 यात्री बालतल जबकि 3,599 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा का दौरा करके वहां जेर इलाज श्री अमरनाथ जी यात्रियों की आयादत की। उन्होंने यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियत मुहैया रखने की मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी। इदारे के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने डिविजनल कमिश्नर को जानकारी देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए एक मखसूस वार्ड कायम किया गया है। इधर अदालती उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की एक रोज़ाना हद मुकर्रर की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने पेशगी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तीफादा करके अपना इंदराज करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर दर्शन शुरू करने की ताकीद की गई है। पहाड़ी ट्राइबल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फोरम के एक वफद ने फोरम के सदर खालिद महमूद खान की सरबराही में लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफद ने मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे कबायली तबके से वाबस्ता मुलाजमीन को दरपेश मसाइल और दीगर फलाही मुतालबात एलजी की दानिस्त में लाए। उत्तराखंड के साबिक वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके कई मामलों पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। दरी असना मेंबर असम्बली शुपियां शब्बीर अहमद कुले की सरबराही में शुपियां का एक अवामी वफद एलजी से मुलाकात हुआ। वफद ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमलावरी से मुतलिक कई अमूर एलजी की दानिस्त में लाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एमबीबीएस की इजाफी 50-50 निशस्तों को नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी मिलने पर सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू और इन दोनों कॉलेजों के फैकल्टी मेंबरान और दीगर अमले को मुबारकबाद दी है। वजीर आला ने कहा है कि तदरीसी साल 2026-27 से इन कॉलेजों में इस इजाफी इनटेक को मंजूरी मिलने से यूटी में तिब के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के सरकार के अज़्म की अक्कासी होती है। आला तालीम महकमे ने कश्मीर सूबे और जम्मू सूबे के सरमाई जोन इलाकों के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में गर्माई तातीलात का ऐलान किया है। ये डिग्री कॉलेज गर्मियों की छुट्टी के लिए 21 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने बारिश के पानी को जमा करके इसे मुअसर तौर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बकाए हयात में पानी की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने इस मानसून के दौरान कैच द रेन मुहिम को बड़े पैमाने पर वसत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर अजम ने कहा है कि मुहिम के तहत हमें हर घर समाज और काम करने की जगहों पर बारिशों के पानी को जमा करने और बरोईकार लाने का निज़ाम कायम करना चाहिए। उन्होंने कुओं और पानी के रिवायती जखीरों को बहाल करने पर भी जोर दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने तालीमी साल 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों के दाखिले के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरखास्तें तलब की हैं। उम्मीदवार जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 में शामिल हुए हैं और यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के ख्वाहां हैं उनसे कहा गया है कि वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। 7 जुलाई से शुरू हुआ ये अमल 19 जुलाई तक जारी रहेगा। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद ने शुपियां में जिला तरक्याती कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में जिले में अमलाई जा रही मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने इन फलाही स्कीमों की मुवसर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए जेर अमल प्रोजेक्टों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। मीटिंग में श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह महदी जिले के मेंबरानी असम्बली और जिला इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक करने के लिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमद से जारी हैं। इस मुहिम के तहत अब तक मुनशियात के खिलाफ काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है और पुलिस इंतजामी और दीगर एजेंसियां इस बिद्दत का मुकम्मल तौर से खात्मा करने में कोई भी लायतुलायल नहीं कर रहे हैं। कुलगाम पुलिस ने कुजर कुलगाम में जावेद अहमद डार और बशीर अहमद डार नामी दो मुनशियात फरोशों के 1 करोड़ रुपये मालियत के 2 रिहायशी मकानात को अटैच कर दिया है। इन दोनों स्मगलरों से 200 किलोग्राम फुकी बरामद की गई है। जिला इंतजामिया पुलवामा के एहतमाम से डिग्री कॉलेज

आकाशवाणी श्रीनगर थी आज का पहाड़ी प्रोग्राम केन के में आ तुसदा मेज़बान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम विच जी आया क्वाखता। उम्मीद है तुसी खैरियत नाल होसो ते प्रोग्राम दिलचस्पी नाल सुनदे होसो। सामीन रेडियो थी कमर्शियल इश्तिहार देने वास्ते कम बजट बिच खासे सारे सामीन तक पहुंचने दा एक इंतहाई मौसर ते असल तरीका है। ए तुसदे कारोबार और चीजां दी पहचान बदेने बिच मददगार साबित होंदा है। रेडियो दी पहुंच हर तबके हर उम्र और हर जाई तक है। लोग सफर दे दौरान कमां ते या घरां बिच रेडियो सुनदे ते हुण मोबाइल उते भी सुनिया जुल सकता है, जिस नाल तुसदा सुनिया आवाम तक बराए रास्त पहुंचता है। टेलीविजन या प्रिंट मीडिया दे मुकाबले बिच रेडियो इश्तिहारात और ब्रॉडकास्टिंग दी लागत घट होंदी है, जिहड़ा इसको किसी भी निके या बड़े कारोबार वास्ते बेहतरीन बनांदा है। सामीन गल्लां होर भी करसां ते आओ प्रोग्राम को अगे वधांदे होयां काबुल बुखारी दी आवाज़ बिच सुणदे हां ए माइया।

समीन आप पहाड़ी प्रोग्राम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 4:20 हो रहे हैं। अब पहाड़ी खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।

खिते विच हयातियाती तनु को बरकरार रखे दी दर खास ध्यान दिती जुल रहा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी नाल जारी है और उन्होंने त्रोणी लगभग 3,00,000 यात्रियां सुन पवित्र गुफा के दर्शन किए और कई यात्री दर्शन करके अपने अपने घरों को वापस चले गए। वो इतना खूबसूरती और मेहमान नवाजी नाल काफ़ी खुश नज़र आ रहा से। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप तो आज सुबह 5,335 यात्रियों पर मुश्तमल 13वां जत्था वादी पहुँच गया। इस पिछों 1,736 यात्री बालतल जबकि 3,599 यात्री पहलगाम के राहदारों यात्रा कर रहे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्ग सुन शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सोरा का दौरा करके उतना जेर इलाज श्री अमरनाथ जी यात्रियों की खबरगिरी की। सूबाई कमिश्नर सुन यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियत हाजिर रखे की हदायत दी। इदारे के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई सुन सूबाई कमिश्नर को जानकारी देंदे होया आख्या कि श्रद्धालुओं को इलाज व मुआलजे की सहूलियात फराहम करने की जरूरत असा को मद्देनजर रखते होया खास कर वास्ते अलग वार्ड रखे गया था। अदालती उजमा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आए वाले यात्रियों की ज्यादा कुल ज्यादा रोजाना तैदाद तय की गई। जिन्हें श्रद्धालुओं के एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं करा ली थी उन्होंने आखिया गया था कि वो तत्काल यानी उसी वेले सहूलियत के कोई फायदा चाहे वास्ते अपनी रजिस्ट्रेशन करने के पिछा ही जम्मू कश्मीर पहुँच गए सन। एक सरकारी बयान विच बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे विच सारे यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार और इंतजामिया की तरफों मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई थी। पहाड़ी ट्राइबल एम्पलाइज वेलफेयर फोरम के एक वफद सुन फोरम के सदर खालिद महमूद खान की सरबराही विच लोक भवन श्रीनगर विच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नाल मुलाकात की। वफद सुन मुख्तलिफ महकमे विच काम कर रहे कबायली तबके नाल वाबस्ता मुलाजमान को सामने आए दया मसलियां और बाकी फलाही मुतालबात एल जी दी नोटिस विच आंदे। उत्तराखंड के मुताबिक वजीर आला तीरथ सिंह रावत सुन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर दे नाल मुलाकात करके कई मामलों का उन्होंने नाल तबादला ख्याल किया। इधर मामले असेंबली शोपियान शबीर अहमद कल्ले की सरबराई भी शोपियान का एक अवामी वफद एल जी नाल मुलाकी होया। वफद सुन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमल आवरी के मुतलक कई अमूर एल जी के नोटिस विच आंदे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन गौरमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गौरमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू विच MBBS दियां इजाफी 50-50 सीटा को नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी मिले तो सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू और दोयां कॉलेजां दियां फैकल्टी मैंबरां और बाकी अमले को मुबारकबाद दी। वजीर आला सुन आख्या कि तदरीसी साल 2026-27 इन्हां कॉलेजां विच इस इजाफी इनटेक को मंजूरी मिले नाल यूटी विच तब दे बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने वास्ते सरकार दे आजम दी अकासी होंदी आ। एक खबर तुसी आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हो। भारत सुन 2028-29 वास्ते अकवामे मुतहदा सलामती कौंसल दे गैर मुस्तकिल मेंबर दे चुनाव वास्ते बाजाबता तौर मुहिम दा आगाज कीता। अकवामे मुतहदा हेडक्वार्टर उपर भारत दी उम्मीदवारी को लांच करने दे मौके उता वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर सुन भारत दे शांति नजरिए को मुतारफ कीता जिसका मकसद आलमी अमन व इस्तेहकाम वास्ते जवाबते दे तहत जामिया तरक्की दा हसूल आ। भारत इसते पहलियां 8 बारी अकवामे मुतहदा सलामती कौंसल का गैर मुस्तकिल मेंबर रहा था। जम्मू कश्मीर को मनशियात को पाक करने वास्ते नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शादोमाद नाल जारी हैं। इस मुहिम के तहत उन्होंने मनशियात के खिलाफ काफ़ी पेशरफ्त हासिल की गई और पुलिस इंतजामिया और बाकी एजेंसियां इस बिदत का मुकम्मल तौर खात्मा करने में कोई भी दकीका फरगजाश्त नहीं कर रही यानी कोई कमी नहीं छोड़ रही। कुलगाम पुलिस सुन कुजर कुलगाम विच जावेद अहमद डार और बशीर अहमद डार नाँ के दो मनशियात फरोशां ते 1 करोड़ रुपए मालियत के दो रिहायशी मकाना को अटैच कर छुड़िया। इन्हां दोई समगलरां कोलों 200 किलोग्राम फिक्की बरामद की गई। जम्मू कश्मीर विच सोआ

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। से बात करें आज का पंजाबी प्रोग्राम।

0: शुमारी नहीं, मेरे ख्याल के बच्चे दारंग में बचे हमारा डिस्ट्रिक्ट बाणीपुरा में सबसे ज़्यादा जो गुजर बरादरी है वह हमारा अलसा दिले गए तो कोज मुकाम तक है
1: जिसके
0: एरिए मेरे ख्याल में 40-60% हमारी गुजर आबादी है
1: जी
0: बाणीपुरा।
2: तो क्या सारा लोग जुड़ा है भी अपना बच्चा ना तालीम दे रहा है तालीम के पास है मतलब आया है, क्योंकि हम देखा ना कि पहला टाइम के बीच हमारी बरादरी का लोग जुड़ा था वे तालीमदार काट तवज्जा दे था ज्यादा उनको जी तवज्जा हुआ थी वह माल चौखरदार हुआ थी फिर टोके चढ़ जानो था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देखने लगा कि आज का वक्त के बीच हर इलाका का लोग जुड़ा है वे अपना बच्चा की तालीमदार तवज्जा दे लगा हुआ। तो क्या थारा इलाका के बीच भी यो रुझान है, क्या थारा इलाका के बीच भी ऐसा हो रहा है कि ना हमने बच्चा ही पढ़ाना है और सारा थारा इलाका का लोग चुने अपना बच्चा ना तालीम दे रहे हैं?
0: जी अल्लाह वो शुक्र हमारा इलाका का काफ़ी इसलिए तालीम को काफ़ी चर्चो है
1: जी।
0: तो सुबह का टाइम 10 बजे के आसपास से फुल केली में हमारा बच्चा निकले दिल खुश हुआ है
1: जी
0: कि शुक्र मेरा अल्लाह को हमारी बरादरी में इतना अल्लाह ने शोर दिया कि हमारा बच्चा भी सोनी तरह बैग बस तो ले गए थे अपनी अपनी मंदिर के ऊपर स्कूल में चले
1: जी।
0: कोई हाई स्कूल में चले कोई प्राइमरी में चले कोई KGBV में चले तो बड़ी खुशी महसूस हो सके शुक्र मेरा अल्लाह को हमारी कौम ने मेरा अपने तो मौको दिता कि इसलिए शुक्र अल्लाह को सारा लोग जुड़िया में इस तालीम का सेक्टर करना
2: के तम खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा भी हमारा ग्रां का बच्चा भी दूजा बच्चा के नाल मुंडा ना मुंडो मिला के इस राह के बीच चलने लगा इस सफर में चलने लगा तालीम का सफर में
0: जी। तम खुशी को पूछे उस वास्तव मेरे रब जाने के जिससे हमारा बच्चा निकले उसने कितनी खुशी महसूस हुई
1: जी
0: इतनी खुशी महसूस हुआ कि जिसकी याद ही क्यों नहीं जरा हमारा बच्चा पहले हैं हम अपनी बात करूं
1: जी
0: कि हमारा वक्त के बीच हम सवेरे फांट ले गए थे मार चौखर कटावा था बाहर दे मालियाँ ले कर चुकावा था आज हमारा ही बच्चा इसे एजुकेशन सेक्टर के बीच नाम हर जात लैंड लगी वजह से बड़ी खुशी महसूस हुई
1: जी
0: बहुत ज़्यादा खुशी महसूस।
2: हम देखा था कि पहला बच्चे की तालीम जुड़ी है ना दूर दराज इलाका के बीच उनकी तालीम दर घट तवज्जा देती जाए थी कहता ना जी यह बच्ची ऐसा नहीं पढ़ाता स्कूल नहीं चलाता दीनी तालीम तो दें था लेकिन दुनियावी तालीम दर घट तवज्जा दें था। लेकिन पिछला कई साल तो हूँ ऐसा हुआ लोगों की ना बच्चा की तालीम तो बच्ची की तालीम जी ना वह काफ़ी ज़रूरी है और आनी भी चाहिए। तो क्या थारा इलाका के बीच भी ऐसा मतलब हो रहा है कि ना अजा भी उत बच्ची ने तालीम नहीं देता?
0: बिल्कुल मेरा अल्लाह वो शुक्र कि इसलिए हमारा हर जितना भी हमारा लोग हैं सारा हमारी बच्ची सारी स्कूल चले
1: जी
0: बिल्कुल कहे किससे मेरे ख्याल में इक्का दुक्का वो कह नहीं सकता
1: जी।
0: तो 90% हमारी जो बच्ची में इसलिए स्कूल में चले गई कोई कॉलेज चले कोई डिग्री कॉलेज चले
1: जी
0: मतलब बहुत अच्छी शुरुआत है।
2: डिग्री कॉलेज कितने दूर है थारा थे?
0: डिग्री कॉलेज हमारा सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है।
2: अच्छा सर 2 किलोमीटर दूर है जी जी
0: रस्तों वही है इसलिए तुमने बड़ी खुशी महसूस हुआ इसलिए लैन चले सवेरे
1: जी
0: बुलखेड़ी बच्चा ही देखे बहुत खुशी
2: जी जी। चलो शुक्र है एजुकेशन न ले कहते तमने ऐसी गल दसी कि अल्हम्दुलिल्लाह थारा ग्रां का लोग भी इस पासे आया हुए कि ना हमने अपने बच्चा ना इलम का नूर तया रास्ता करना है इलम की लोचड़े व दसनी है। तो इसके नाल नाल हम देखा कि रोड कनेक्टिविटी जुड़ी है वह स्कूल तक पहुँचने वास्ते काफ़ी ज़रूरी है राह काफ़ी ज़रूरी है। पहले के हुआ था कि हर इलाका में जितना भी कंडी इलाका है दूर दराज इलाका जिड़ाएं स्कूल तक पहुँचने वास्ते 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पाया था लेकिन ऐसा होन नहीं हर जगह में रोड कनेक्टिविटी हो गई है। तो के तम अपना इलाका के बारे दसेंगा के कुछ सूरत हाल है उसकी?
0: जी अल्लाह लाख लाख शुक्र के हमारा इलाका में मेरे ख्याल में पूरा बांडीपोर में ही इक्की दुकी जगह रही हैं जिसके बीच मारे आज रोड नहीं
1: जी
0: बाकी हर जगह रोड है और पक्की रोड है मैगनम वाली रोड है
1: जी
0: हमारे लोगों ने शुक्र मेरा ख्या अल्लाह लाख लाख शुक्र की बड़ी मेहनत करी
1: जी
0: काफ़ी मेहनत करी आप उम्मीद रहो बाकी लोग भी रहा हमने सामाजिक काम किया बिल्कुल महाराज घर घर में एकदम वाली रोड है
1: का
0: कमी होने की दुखी वह किसी जा घट वे रोड किसी जा बद वे जी नेशनल हैवी दवा बद वेगी
1: जी
0: जी मारी लिंक इन में है वो कमी है बाकी शुक्र अलग है रोड है
2: रोड कनेक्टिविटी के नाल नाल फिर पानी को होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तुम था ताँ पूछूँ लोगों ये सवाल कि हमने ये प्रोग्राम ताँ शुरू किया है कि हमने थारा इलाका के बारे पूरा जानना है इस वास्ते है। और पानी को कई कुछ सूरत हाल है आज भी क्या इसी तरीका ना उन कट्ठा में जाना पाया कि ना तमने सहूलत पहुंची है गवर्नमेंट का तरते
0: पानी की हमारा पूरा बाणीपुर का भी शुक्र मेरा लाभ कि पानी दे मारो बाणीपुर में शावर भी है
1: जी
0: अद्य भी है और पानी भी है
1: जी।
0: तो है किसी किसी जगह का कमी पानी की है ता हाल कहूँगा कि शुक्र अल्लाह वो है पानी
1: जी हर कार के
0: कमी वह हमारी अपनी इस कमजोरी की वजह कि हमने अपना नाला गंदा किया
1: जी
0: चश्मा गंदा किया उस वजह से थोड़ी कमी है।

0: तो सर लोग खास ख्याल करें, हमारा चश्मा साफ रहे, हमारा नाला साफ रहे, तो इंशाल्लाह वह कम ही बिताने के हमारा नाला में हमारा चश्मा में पानी ठीक ठाक है।
1: नाला
0: गवर्नमेंट ने
1: चश्मा
0: भी काफी क्यों
1: जी,
0: है
1: नाला चश्मा के अलावा क्या थारा मतलब हर डेरा तक ना पानी को नलको पहुंचे हुआ है?
0: बिल्कुल हर डेरा कार कर नाल दे जल पहुंचे हुए जी।
1: जी जी
0: जी जी
1: अगर हम बिजली की गल करा तो कई कुछ सूरत हाल है बिजली ने लेके थारा इलाका की?
0: पूरा इलाका हमारा बिजली से है और कम ही है, ये चाहे कटौती शटौती होती है ना, बाकी बिजली है पूरा इलाका में
1: जी
0: जी है, शुक्र अल्लाह हुआ, हर घर घर बिजली भी है।
1: पोल वगैरह हम देखा था पहला कि तार जुड़ी हुई थी वे खोड़ियाँ के ऊपर लड़काई हुई थी, बूटा बाकिया ने लड़काई हुई थी, क्या आज भी उसी तरीका नाल है या कि तम या कि ना नवा पोल जुड़ा है वे मतलब लाया गया है नवा तरीका का ना जिस तरीका ना हर ग्राम के बीच के हिसाब है तारा इलाका को?
0: जी शुक्र अल्लाह दिन दिन सुधार आवे है, कितने कितने कमी में तुमने पहले यार की कमी है, मगर आस्ते आस्ते कमी पूरी में लगी हुई, आज हर जगह बिच पोल नवा लग लेगा, स्मार्ट मीटर भी लगे लगावा, पोल भी दे लगा,
1: जी
0: अगर हम टोर फेर करा चलन इंशाल्लाह सब कुछ जो है
1: जी
0: जी
1: मुतमईन है तम इस चीज़
0: मुतमीन
1: से भी
0: है
1: कि
0: बिल्कुल
1: मतलब उसका
0: मुतमीन है
1: वैल्यू होगा
0: बिल्कुल मुतमीन है
1: जी। तो नज़ीर साहब इस तमने पानी की गाल की, तमने एजुकेशन की गाल की, तमने बिजली की गाल की, तो इसते अलावा बांडीपुर इलाका जुड़ा हुआ है, बांडीपुर पूरा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है, यो किस चीज़ वास्ते मशहूर है?
0: सीओ जी इलम आप अदब
1: जी
0: इन त्रों चीज़ों में समारोह बाणीपुर मशहूर
1: तमने अदब की गाल की, तो क्या नज़ीर साहब कुछ शेर व शायरी भी करें?
0: जी नहीं काटी
1: किससे की तमना
0: उस
1: शेर व शायरी, किससे को कलाम तमना कोई याद है ऐसा? हम देखा ना कि हमारा अक्सर लोग चिड़ाएं वे कितने दूर दराज इलाका में चले क्या या कितने ऐसे तमने पानी पानी को बैस रहा तो वे खुदा बख्शार का बैत सैफुल मलूक हो गया
0: जी
1: ये चीज़ जी हमेशा हम गुनगुनाता रहा सूफियाना कलाम गुनगुनाता रहा,
0: जी
1: तो क्या थारा भी इस पास है मतलब शौक रहे है तम भी इस चीज़ ने सुनता करता रहे हमें?
0: बड़ी सोहनी गल करी तुमने, असर साहब रंग अल्लाह जन्नत अलफिरदौस
1: आमीन
0: अजीम साहब इकबाल अजीम साहब
1: जी जी जी
0: मियां बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह,
1: रहमतुल्लाह जी
0: किसी तारीफ का भी मुताज नहीं
1: मोहताज
0: या
1: नहीं
0: किसी जानकारी का, तो जिस वक्त ही उन्होंने कलाम हम सुना अखा ने पानी निकलावे
1: जी
0: जी
1: के कुछ सु कुछ सामना भी मतलब सुनाओ ना के किड़ो तमना ज्यादा मतलब पसंद आवे उसको कलाम
0: ज्यादा असर साहब का ना
1: जी
0: उन्होंने जितनी भी है तो उसमें बहुत मैंने दिलचस्पी है, जिस वक्त
1: जी
0: असर साहब हो तो बाजे ऐसे टाइम में मौको भी आए हो कि उस रोजे आदमी
1: कुछ आमना तबूर मतलब
0: ऐसा
1: गुनगुना के
0: याद
1: कुछ
0: नहीं
1: मतलब
0: रचना
1: करें
0: निजामी साहब रहा हूँ याद है कि इन जगह में भी मारा डेरा लगे हुए था कदे कदे,
1: जी इस जामा भी लगे हुए
0: इस
1: था
0: जामा भी लगे
1: मारा
0: हुए था
1: डेरा
0: मारा डेरा कदे कदे,
1: खुशियां की
0: खुशियां की कई रात गुजारी
1: होया
0: होया सवेरा
1: सवेरा
0: कदे
1: कदे
0: कदे,
1: कदे जी
0: कई कई बारी तस्या खेड़िया कई कई बारी रुना भी था,
1: जी
0: ऐसी ऐसी गलें उन्होंने शहजादा की
1: जी
0: ये खुदा को सदको दे रेडियो को सदको थारा प्रोग्राम को सदको मारे तक पहुँची
1: रेडियो कद सुने लगावा
0: जी, रेडियो था मेरे यहाँ 35-40 साल हो गई
1: जी
0: रेडियो बिल्कुल सुनते रहूँ हर सारा प्रोग्राम
1: जी
0: अपना गुजरी प्रोग्राम तो बहुत ही प्रोग्राम ही अपना वो सुनना ही हमने
1: जी
0: दवाई मारी
1: रेडियो
0: पहचान
1: भी जी जी कितना एक फायदेमंद है जी दूर दराज इलाका वास्ते रेडियो
0: बहुत जरूरी है जी,
1: जी
0: इसने कोई नेटवर्क नहीं लाना भावी डूंगी जगह भावी उच्ची जगह रेडियो ने चलना ही चलना है,
1: जी
0: उतना ज्यादा खर्चो भी नहीं कोई 35-40 रुपया का वो मसालो आवे
1: जी
0: तो जितना मर्जी चला लियो 2-3 महीने कर दिए खर्चो भी नहीं, तो कोई रेडियो में ऐसी जानकारी भी नहीं कि जड़ी जानकारी कोई फेक हुआ या झूठी हुआ,
1: बिल्कुल
0: जितनी भी रेडियो की खबरें वह बिल्कुल सच्ची हैं सही हैं, तो
1: जी
0: दूजी गल हमने भी के पतो थो कि हमारी कौम के है आर पार लिया ही है पूरी बरे सगीर के बीच, अगर हमारी इसलिए हमारी गुजर बरादरी हमने पतो ये जानकारी हमने रेडियो से मिली है, सिर्फ
1: जी
0: पूरी दुनिया में बड़ी बरादरी है बड़ी कौम है
1: जी
0: बड़ा बड़ा मारा जा रहे हैं गुजर कौम का, बड़ी खिदमत
1: सुनता
0: करी
1: रहे अपना इस प्रोग्राम
0: सुनता
1: में
0: रहे
1: डेली
0: बिल्कुल जी
1: कैसा
0: कंटिन्यू
1: लगे फिर तमाम ज्यादा मतलब
0: बस
1: किस तरह
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा लगे जी
1: जी
0: अपना
1: जी
0: प्रोग्राम किसना नहीं अच्छा लगता जी,
1: तो जी साहब इससे पहले तो हमने गल की थी कि हम ठेकेदारी करा था पहला उसके बाद हूँ मेवा को काम करा
0: जी
1: लगावा,
0: जी
1: तो एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर की ग्राम गल करा का तो के कुछ थारा इलाका की सूरत हाल है उस बारे दसेंगे थोड़ा बहुत?
0: जी एग्रीकल्चर बिच ठीक ठाक ही हमारा इलाकों घाटी है थोड़ा, हमारा लोग एग्रीकल्चर बिच घाट दिलचस्पी दें,
1: जी
0: अगर एग्रीकल्चर बिच हमारा लोग मेहनत करें तो एग्रीकल्चर को बड़ा फायदा है,
1: जी
0: तो यो भी मेरा रब को देना है, हमारा चौधरी साहब को उन्होंने बड़ी मेहनत करी तमने पतो ही वो चौधरी साहब ने बहुत इस सेक्टर बिच मेहनत करी है,
1: जी
0: तो काफ़ी दूर दूर हर
1: क्या
0: ग्राम
1: सारा
0: बिच
1: लोग बागवानी पासे आवे लगा हुआ कि ना वही पहला मतलब मकई बीजनी फिर उसके बाद
0: नहीं जी
1: कहता
0: वह गल ही
1: कि
0: नहीं
1: ना
0: है
1: बाग शाग ला लिया उन लोगों ने
0: बिल्कुल जी हर आदमी ना ऐसा कोई नहीं लफ्ज है जिसका बुआ गए बाग

0: चार कनाल, पांच कनाल, दो कनाल, दवाइयां, अपनी मोटर रखी हुई है, अपना पानी को सिस्टम रखे हुए, अपनी कोल बनाई हुई है, मेहनत करें लोग जी, फायदा।
1: और के कुछ मसरूफियात है इसके अलावा थारा ग्रां का लोगों की के कुछ करें?
0: ज्यादा हमारा लोगों ना तवज्जो बस मजदूरी पर रखी हुई हो
1: जी,
0: तो मेरे ख्याल में इससे हट के, अगर मजदूरी से हट गए भी तो अपनों बागवानी को है, एग्रीकल्चर को, अगर इस तरह हमारा लोग मुड़ेंगे इंशाल्लाह फायदेमंद भी रहेगा, फायदेमंद भी रहेगा।
1: हमारी अपनी बिरादरी का कितना एक लोग थारा ग्रां का मिलाजमत करने लगा इस टाइम? और
0: ठीक ठाक ही मेरे ख्याल में 10-15% लोग हैं जरा मुलाजमत हैं
1: जी,
0: मुलाजम, कोई फौज में, कोई मास्टर हैं, कोई चंगा
1: जी
0: उच्चियाँ उदम पर भी हैं।
1: सेहत की ग्राम गल करा तो बांडीपुरा को इलाको जुड़ा है ना, ये काफ़ी मशहूर है
0: जी,
1: तो सेहत न लेक है उत की तम झील वुलर देख लियो
0: जी,
1: है उसते उफर चले जाओ तम तो फिर गुरेजदार चलता के बिच
0: जी,
1: वे पहाड़ देख लियो, राजदान टाप देख लियो
0: जी,
1: तो कितना एक मतलब तमने इससे फायदा पहुँचा लगा वो के कुछ सरगर्मी है के कुछ सेहत न लेकर तम दसें का कि कितना एक इलाको थारो अगे हुआ है
0: जी। सेहत वाले पास हमारा लोग घाटी गया है मालूमता हमारे सेहत की गुंजाइश बड़ी है
1: जी,
0: बड़ी गुंजाइश है जी हमारी ग्रेस पाती तो शुक्र मेरे अल्लाह को है लोगों ने रोजगार का रस्ता है वैसा ना किसी ने दुकान है किसी ने गड्डी को है
1: जी
0: तो फायदो है ही है। अगर मारो एक साइड आवेगा पथरादार हूँ नागा मार्गदार हूँ
1: जी
0: अगर इंगा जी एक रोड कनेक्टिव हो जाए मतलब अगर जाकर नीलम वादी ना मिले वह भी ग्रेस ना मिले
1: जी
0: इंगा जी हो गए तो फिर तो मेरे ख्याल में पूरा मारो बानीपुर इसमें
1: तो इस वास्ते तमने कोई तो वजह दी थी इस पास है मतलब गए हैं तम डिपार्टमेंट तक
0: नहीं
1: से तक
0: नहीं
1: ना
0: गया, नहीं गया जी
1: जी
0: इस पास नहीं गया तो बाकी ग्रेस ठीक ठाक चले जी हाँ जी बहुत रश है।
1: तम इस पैगाम ना अपना ग्रां का अपनी तहसील का जी शहूर बाशहूर लोगों तक पहुँचावेगा कि हमने यो या रोड जुड़ी है उस पत्थरा तक उस डेस्टिनेशन तक ले जानी है इस वास्ते तम अगे आओ क्यों चाहेगा तम पैगाम देना चाहेगा
0: ये बस थारी दुआ वे दे थारो साथ वे अगर हम क्यों नहीं कर सकें मेहनत भी करेंगे अपना जहाँ बड़ा लोग मारा है बड़ा उन्हें तक भी गल पहुँचावेंगा और ये हमारी रोड होनी भी चाहिए नागा मार्ग दे ले गए अगर आड़ो आवे बुमसी आवे तो बहुत बड़ो बस इलाको है तो अगर फिर मोल गए ग्रेस राजडान टाप के ऊपर यह मिल सके हमारी रोड फिर पूरी हमारी जो गुजर बस्ती है सारी डिस्ट्रिक्ट बानीपुर कनेक्ट हो जाएगा
1: जी।
0: जी
1: इन जनरल मतम दसें का कि तम अपना इलाका की तरक्की थे कितना एक खुश हैं और के कुछ उस चाके बिच अजा और करने की ज़रूरत है किस चीज़ की कमी है थारा इलाका में?
0: जी शुक्र मेरे अल्लाह को है भी काफ़ी तो कमी भी है कमी होती भी नहीं पूरी करता करना टाइम लगेगा हमारा लोग इस वक्त ही जागे जी कमी वे भी पूरी हो जाएंगी
1: जी
0: तो है कमी हमने थोड़ी पानी की हमने ज़्यादा है
1: जी
0: जी पानी की कमी है पानी की हम कदर करता नहीं सिर्फ आनो तो टोलना नाला नदी चुश्मा गंदा कर छड़े हैं अगर पानी आला पास मारो थोड़ो
1: आखिर पर थारो के पैगाम रह को मारा सारा सामीन तक भी और ख़ास कर थारा इलाका का लोगों तक और फिर एडमिनिस्ट्रेशन तक कि थारा इलाका में और के कुछ होना चाहिए के पैगाम रह को थारो?
0: एक हमारा लोलाब रोड है जल्दी जा बहुत ज़रूरी है हमारे वास्ते
1: जी
0: उसका प्रपोजल DPR हो है
1: जी
0: तो कोई काम करना उसमें है कोई देरी है उसमें जंगलात वालों को फॉल्ट है
1: जी
0: अगर हमारी लोलाब वाली रोड थ्रू हो जाए लोलाब दे बांडीपुरा में
1: जी
0: तो उसको हमारी गुजर बरादरी ना बल्कि सारी पूरी कौम ने फायदा हुआ को
1: जी
0: पूरा बांडीपुरा ने उसको फायदा हुआ को तो इसके अलावा अपनी कौम नहीं आकर उनके अपना बचाना पड़ाओ
1: जी
0: तारी माला पास मोड़ो नशा दे पीछे हटो
1: बिल्कुल
0: नशे बहुत बुरी आदत है
1: जी
0: बड़ी खुशी महसूस हुई थी कि जिससे हमारा बच्चा गया हाथ में फांट लेकर बकरी चार रही था वो भी हमारे से एक बहुत अजीम चीज़ थी
1: दौर
0: क्योंकि हमारो पेशो थो हमारा दौर था वो
1: जी
0: आज बच्ची सर वहीं बच्चा अगर बकरी में चार रहे थे मम्मू में बीड़ी हुआ उससे बहुत इंसान मायूस हुआ कि बीड़ी नहीं लौड़ी थी होनी
1: जिन्हें
0: हाथ में कलम दुआज लौड़ी थी होनी
1: बिल्कुल बिल्कुल तो हर एक माँ बाप वास्ते थारो के पैगाम रह को खास कर जिस तमने इनके गाल की नशा की गाल की तो इसना किस तरीका ना अपना कार थे मतलब मुकाया जाए को
0: बस अपना जितना माँ बाप है अपनी माँ ना और बाप ना बच्चा के बारे में बहुत कुछ देखना होगा मेरे बच्चों से मेरे स्कूल जाए जो किस हालत में मुड़ गया हुआ है
1: जी
0: जो ठीक ठाक इसने नींद ठीक आवे जो मोबाइल ना ज़्यादा मत रहे अगर अपना बच्चा ना नशा दे हम ठकन दे मेरे ख्याल में इसके बाद हमारे पास बड़ी दौरत का ही नहीं
1: जी
0: नशा की बिदत मेरे वाला हमारी पूरी कौम ना बल्कि पूरी कश्मीरी ने इसे आज़ाद करा दिया बेहतर कर
1: नज़ीर अहमद सीर साहब तमने अपना कीमती वक्त कढ़िया तब मारे को आया और अपना ग्रां के बारे आमना आगा किया आमना दस्यो हर चीज़ न लेके आमने थारा ते जानने की कोशिश की ते इंशाल्लाह

हम गल की थी आज कदोर में जी एक्सटेंशन रेट से यानी जिसने अल्टीमेट कॉज जुड़े हुआ वो इंसान को है अप्रोक्सीमेट कॉज में जुड़ा वो बाकी जी तब्दीली आ रही इंसानी जी दखल अंदाजी एक तो हैबिटेट लॉस है यानी जिस जगह कोई नस्ल रह रही है उसको कटाव है उसकी बर्बादी है और अपना मकासद वास्ते है कुदरती वसाइल की ओवर एक्सप्लाइटेशन जरूरत ज्यादा उसको इस्तेमाल करना या दूजा इलाका जी एलियन इनवेसिव स्पीशीज हैं जी वे आन के उत्त लाने जिस तरह के कंडा है सुमलू को कंडो है या बाकी डॉक्यूमेंट्री जी है वे वीड समय खबल जिसने के वे जितनी भी है वे

زاہد نے ہر گناہ پر پھر پھر گیا چکمایا, زاہد نے ہر گناہ

हमारे प्रोग्रामों के हवाले से एक इतला समाप्त करें। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक की ताज़ा शुमारी की रिकॉर्डिंग कल यानी बुधवार को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक हो रही है। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है कैंसर से लड़ रहे बीमारों का ख्याल कैसे रखा जाए। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदऊ किया है नामवर मौलिज डॉक्टर अबरार रसूल को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिज से मौजू की मुनासबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो राबता करें। हमारा फोन नंबर है 01942480364। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा कल बुधवार को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक और हमारा फोन नंबर है 01942480364। ये थी एक इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब गोजरी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

0: 13 शोरिया विजय यात्रा ना की यादगारी मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन ना चंडी दास के रवाना कियो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एक्सपीडिशन नाल लोगों खासकर नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा ना बढ़ावा हासिल होगा। एक्सपीडिशन को इनेकाद करगिल विजय दिवस 2026 की तकरीबा का तनाजर में किया गया है और यह इस महीना की 26 तारीख ना करगिल वार मेमोरियल द्रास लद्दाख में इख्तिताम होगी। इस दौरान 28 मोटरसाइकिल सवार 13 त्याड़ा के अंदर 1900 किलोमीटर को सफर करके भारतीय फौज का बहादुर जवाना की कुर्बानियां याद करेगा। मुल्क को सारा तो बड़ो ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 आज भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू होयो। टेक्सटाइल्स का मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इसको इफ्तिताह कियो। बाद में मीडिया का नाल गल करता हुआ उन्होंने कहो कि भारत टेक्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नजरियो है और इस बैन अवी नुमाइश में 130 मुल्क तू ताल्लुक रखने आला 60,000 तो ज्यादा बायर्स और नुमाइशकार हिस्सों ले रहे हैं। आला ताली महकमा ने कश्मीर सूबा और जम्मू सूबा का सरमाई जोन इलाका का सारा सरकारी डिग्री कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टियों को ऐलान किया है। यह डिग्री कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों वास्ते 21 जुलाई तो 2 अगस्त तक बंद रहेंगी। तो इसका नाल ही गोजरी खबरों को यू बुलेटिन मुक्यो दियो इजाजत अल्लाह हाफिज।
1: आकाशवाणी श्रीनगर अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नाश होगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
3: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
2: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
3: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उस सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है, वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
2: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है।

0: हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावा FM 71.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट समय 5 मिनट पेट शबजी पेशकदमत शुभ प्रोग्राम गमी बाय निंद खतरा।

0: ये छे आकाशवाणी। शाम चे शबज थे 15 मिनट सबद खबर नाम हित छुस बह रऊफ अहमद गोड़ खास खास खबरन पे टाक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूद वन जमा कर असरदार तरीक़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पे जोर दुत। भारत जठ बापत अकवामी मुतहदा सलामती कौंसल किस गैर मुस्तकल मेंबर सिंदी चुनाव खातर बाज़ाब्ते पाठ मुहिम शुरू करमच। मुल्क सार्वी खुद बोड़ टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स जतवुह सपद भारत मंडपम नवी दिल्ली मज शुरू। खर्ज वजारत किस तर्जमान रणधीर जायसवाल सुन वन भारत मगरबी एशियास मज जारी बदलवन सूरत हालस पे सन नजर थवित। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो सबक वजीर डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल यम दुनिया द्राम। खबर तफसील सान वजीर आजम नरेंद्र मोदी रुद वन जमा कर असरदार तरीक़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पे जोर दुत। बकाय हयात मज आब अहमियत वतलान तमो यहरस दौरान कैच द रेन या वनो रुद वन रसरवन मुहिम बड़स पैमानस पे फैलान ज़रूरत पे जोर दुत। वजीर आजम वोन मुहिम तहत पजे प्रथ अकिस ग समाज तो काम कर जाए पे रूद आब जमा कर कामि लागन निज़ाम कायम कर तमो कीर तो आबिक रवायती जखीर बहाल कर जोर दुत। भारत जठ बापत अकवामी मुतहदा सलामती कौंसल किस गैर मुस्तकल मेंबर सिंद चुनाव बापत बाज़ाब्त पे मुहिम शुरू करम। अकवामी मुतहदा हेडक्वाटर्स पे भारत उम्मीदवारी लॉन्च करने किस मौक पे खर्ज वजीर डॉक्टर एस जयशंकर भारत शांति यानि अमन नजरिए मुतारिफ यमिक मुदा मकसद आलमी अमनो इस्तेहकाम कायम थवन बाप जाम तरक्की प्रावन तमो वो पूरे दुनिया वन तनाव तो अदम इस्तेहकाम बुथि तथा तनाजुरस मु अकवामी मुतहद रोल गोडनिक मुकाबल ज्यादा अहमियत थवान। भारत अमि ब्रो ठि फिर अकवामी मुतहदा सलामती कौंसल गैर मुस्तकल मेंबर रूदमुत। बचाव वजीर राजनाथ सिंह कर आज कौमी जंगे यादगार नवी दिल्ली पे त्रुवहन दोहन हज शौर्य विजय यात्रा नावच यादगारी मोटर साइकिल मुहिम झंड हवि रवान। अत मौक पे वन तमो जमि मुहिम हज बदौलत मिल लूकन खास पे नौजवान मज हबुल वतन हंद जज्बस मजीद पोछर। अमि मुहिम हूं सज कारगिल विजय दिवस जतवुह चन तकरीबन हंदिस पोथ मंजरस मज कर आम तो यह मुहिम वाति यम रत शतवुहम तारीख कारगिल वार मेमोरियल द्रास लद्दाख मज अंद। अत मुहिम दौरान कर 28 मोटर साइकिल सवार 30 दोहन अंदर 1900 किलोमीटर सफर कर भारतीय फौज चन बहदुर फौजन हज कुर्बानी याद। मुल्क सार्वी खुत बोड़ टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स जतवुह सपद भारत मंडपम नवी दिल्ली में शुरू। कपर वजारत सिंध मरकजी वजीर गिरिराज सिंह तुल अथ दस पत प्रसार वसीलन सत कान वो तमो भारत टैक्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन नजरिए तो अत बैन अवी नुमाइश मखत त्रहन मुल्कन हंद जायद शेठ सास बयर यानि खरीदार तो नुमाइशकार हिस्से निभान।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी है। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: नव दिल मगरबी एशियास मज जारी सूरत हालस पे सन नजर थवित। भारत एक फिर आबनाए हरमुज पे बिला रुकावट नेविगेशन तो महफूज तजारत पे जोर दुत।

0: بشر عايز ياسين إجازة خدها حافظ.
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शेरवीर अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.1 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज दर्ज करने को लेकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दिनों से सियासत काफी गर्मा चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हवाले से पहले ही अपना लाहे अमल जाहिर करते हुए बशमूल जम्मू कश्मीर BJP सदर सत शर्मा के तमाम जमातों को एहतजाज में शामिल होने की दावत दी है और इस हवाले से तमाम लीडरान और पार्टियों को डॉ फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दावतनामे भी इरसाल किए गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर BJP ने नई दिल्ली में 20 जुलाई को होने वाले एहतजाज को रद्द करते हुए इसे जम्मू कश्मीर में जमीनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार देते हुए 20 जुलाई को ही 25,000 ठेका मुलाजमीन की भर्ती का मामला उठाते हुए सेक्रेटेरिएट घेराव का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी जमात रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे की हामी है, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नई दिल्ली में मुजवजा एहतजाज में वो शामिल नहीं होगी। राजौरी में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी जमात मशावरती सियासी अमल पर यकीन रखती है और एहतजाजी प्रोग्राम के ऐलान से कबल उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, इसलिए अपनी पार्टी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी। इस दौरान PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने भी NC सरकार को मशवरा दिया है कि आल पार्टी मीटिंग बुलाकर सभी पार्टियों से राय मशवरा किया जाए और एक मौसर लाहे अमल तरतीब दिया जाए। हकीम मोहम्मद यासीन के मुताबिक अगर ऐसा किया गया तो वो एहतजाज में शामिल होंगे, बसूरत दीगर वो भी इस प्रोग्राम से खुद को अलग रखेंगे।
3: इससे पहले स्टेटहुड के बारे में जो चर्चा यहाँ पर हो रही है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सब पार्टियों को एक चिट्ठी भेज दी, उन्होंने हमें भी एक चिट्ठी भेज दी थी इस जंतर मंतर पर साथ चलने के लिए। उस सिलसिले में मैंने आज अपने जो कोर ग्रुप हमारा है PDF का, उनके साथ मशावरत की और उनके सामने सारे दलाइल रखे कि हम स्टेटहुड के साथ है, ये एक ही पार्टी का एजेंडा नहीं है, 1,30,00,000 लोगों का मंशूर है, एजेंडा है और ख्वाहिश है। और हम उसे उनको एक चिट्ठी फारूक साहब को भेज रहे हैं, एक रेजोल्यूशन भी पास किया जो हम आपको अभी हम देंगे, उसमें हमने ये जिक्र किया कि आप एक आल पार्टी मीटिंग जाने से पहले बुलाए ताकि एक रोड मैप वहाँ पर मुरतब किया जाएगा कि कौन सा स्टेटहुड आप चाहते हैं। जो स्टेटहुड पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र है कि जम्मू कश्मीर को जितना जल्दी मुमकिन हो उसकी इनको वापस स्टेट दी जाए। और इसमें वजाहत नहीं, जो चिट्ठी का मतन है फारूक साहब का उसमें 370(3)(5) जिसमें हमारे लैंड का मामला है, हमारे जॉब का मामला है, हमारी आइडेंटिटी का मामला है, स्टेट का मामला है जो 2019 का है, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं। हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार है अगर हमें मस्बत जवाब मिला, अगर नहीं तो फिर हमने फैसला अदर किया, उस सूरत में हम जंतर मंतर पर शमूलियत नहीं करेंगे। तो इसीलिए आज ये हमने मीटिंग बुलाई थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि फारूक साहब नज़रसानी इस पर करेंगे, तमाम पार्टियों को बाज़ाब्ता बुलाएंगे। जिस तरह पहलगाम के वाक़े के बाद उन्होंने आल पार्टी मीटिंग बुलाई उधर SKICC में, तो हमने वहाँ पर अपनी तजावीज़ उस रखे, इसी तरह आज को भी उनको चाहिए कि हर एक को पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि हर एक की राय जानकर एक ऐसा रोड मैप बनाया जाए जिसमें जम्मू कश्मीर के तशखुस का, यहाँ के लैंड का, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ की आइडेंटिटी का बाज़ाब्ता खुले आम इजहार किया जाए। वरना स्टेटहुड BJP वाले भी बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर ने भी कह दिया स्टेट देना उनका हमारी कोई मिन्नत नहीं।

0: हमारा हक है, मगर हम उस स्टेट को चाहे जो हैयत में हमारे पास 2019 को।
1: तमाम पार्टियों के साथ मशावरत के बाद ही दिल्ली में एहतजाज का प्रोग्राम तय किया जाए, हकीम मोहम्मद यासीन का एनसी सदर को मशवरा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियमान आगा सईद रोहला मेहदी ने नई सियासी जमात बनाने से मुतल्लिक कयास आरायों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक कोई नई जमात कायम नहीं की है। बड़गाम में नामनिगारों से गुफ्तगु करते हुए आगा रोहला ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मीडिया उनसे ज्यादा नई सियासी जमात बनाने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने तंज अंदाज में कहा कि अगर आप नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो बना लें, फिर मैं देखूंगा कि वो अच्छी जमात है या नहीं, इसके बाद फैसला करूंगा कि उसमें शामिल होना है या नहीं। उन्होंने वाजा किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजवजा जंतर मंतर एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। उनका कहना था कि आवाम ने उन्हें खसूसी दर्जे की बहाली के लिए मैंडेट दिया है, सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली के लिए नहीं। आगा सईद रोहला का कहना था कि दफा 370 जम्मू कश्मीर की शिनाख्त, वकार और आईनी हकूक से जुड़ा मामला है, इसलिए उनकी सियासी जुदोजहद का महवर इसकी बहाली ही रहेगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली तक मुतालबात को महदूद करना भारतीय जनता पार्टी की सियासी एजेंडे के मुताबिक है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सबिन जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर सेहत और साबिक वजीर आला शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद और डॉ फारूक अब्दुल्ला के बरादर असगर डॉ मुस्तफा कमाल तवील अलालत के बाद श्रीनगर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। डॉ मुस्तफा कमाल जम्मू कश्मीर के बेबाक और मुखलिस सियासी लीडरान में शुमार होते थे। वो अपनी सियासी करियर के दौरान कई बार जम्मू कश्मीर सरकार में काबीना वजीर के तौर भी शामिल रहे, जबकि पार्टी में भी वो तर्जुमान के साथ साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। डॉ मुस्तफा कमाल की वफात पर जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में रंज का माहौल है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा, पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन, एमएलए लोलाब कैसर जमशीद लोन, एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी, जिला सदर शोपियान शेख मोहम्मद रफी, एमएलए जैनपुरा शौकत हुसैन गनाई समेत दीगर कई लीडरान ने डॉ मुस्तफा कमाल की मौत पर रंज का इजहार करते हुए उनकी सियासी खिदमात को याद किया है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन गुज़श्ता हफ्ते डोडा खत्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने और सैलाबी रीलों की वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। अलबत्ता मुतासरीन को हनू सरकारी इमदाद और बाज आबादकारी का इंतजार है। डोडा खत्ते की सरहदें चूंकि हिमाचल से मिल रही हैं और उत्तराखंड के मौसमी हालात का असर यहां रास पड़ता है, यही वजह है कि इन दोनों रियासतों में मानसून का असर डोडा खत्ते के साथ साथ रियासी और रामबन में रास देखा जा सकता है। खत्ते में इस बार मानसून का असर ज्यादा देखा गया, जबकि वहां नदी नालों की हैयत भी बदल चुकी है, जिससे पानी का कुदरती बहाव मुतासिर होने लगा है और आसपास की बस्तियों पर इसका रास्ता असर पड़ रहा है। इस दौरान साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने डोडा खत्ते के मुतासर इलाकों का आज खुद जायजा लेने के बाद शहरबीन को बताया कि खत्ते में दर्जनों घर बादल फटने के वाकयात के बाइस मुतासिर हुए, जबकि बड़े पैमाने पर दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने खत्ते में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तामीर के दौरान माहौलियाती जवाबित को बलाए ताक रखने से पैदा हो रहे हालात पर काफी मायूसी का इजहार किया और हुकूमत से अपील की कि कुदरती आफात का शिकार हुए लोगों और ताजरों की बाजाबादकारी के लिए संजीदा इकदाम की जरूरत है।
2: इससे कबल भी 2 जून को वहाँ कलर ब्रश हुआ था, जिसकी वजह से अंदरूनी एक दरसगा था वो भी तबाह बर्बाद हो गया, 20 मकानों को नुकसान हो गया, कुछ में पूरा सामान उनका दरम बरम हो गया, मगर अभी तक गवर्नमेंट ने उनको कुछ भी नहीं दिया। बल्कि जो वहां से दरसगा को खाली करने के लिए सरस निकाला गया, जो तबाहियां बर्बादियां थी वो लोगों ने खुद कर दी गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तक कुछ नहीं मिला। इसी तरह से परसों आज से 5 दिन पहले यहाँ ठाठरी में दूसरा क्लाउड ब्लास्ट हुआ, ऊपर जो पीएमजीएस वालों ने मलबा जमा किया था एक नाले में वहीं पे क्लाउड ब्लास्ट हुआ और वहां से पूरा बोल्डर मिट्टी सलाश उतर के नीचे दुकानें मकान तबाह बर्बाद। एक वहां पे बहुत बड़ा स्कूल था, उसकी बिल्डिंग भी नीचे से सारी उसकी बुनियाद निकल गई, 10-1 मकान गिर गए, लगभग करोड़ का नुकसान हो गया। मैंने एक ही दुकान का मायना किया था, 54 लाख का उसका सामान था, वो सारा दुकान नीचे थी और ऊपर से जब मलबा आया पूरा उस स्टोर के जितना भी आटा चावल राशन मिजानी किरियाना वगैरह मनियारी वगैरह सब जितना भी खाने पीने और रहने सहने का सामान था बेचने का होलसेल दुकान

0: में सारा मिट्टी में मिल गया। वो इतनी बदबू इतनी स्मेल आ रही थी वहाँ पे, कोई इंतजाम वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं मैंने देखा। और इसके अलावा जो मकान गिर गए हैं उनको कहा था मैंने कि 6 महीने का राशन दे दो, वो भी नहीं दिया गया। रेड क्रॉस से बर्तन वगैरह दे दो, थोड़े से बर्तन दिए हैं, मामूली रुपये हजार हजार का उनको सामान दिया है, वो 10-10, 20-20 किलो चावल दिए और कुछ भी नहीं। ऐसा मैं चाहता हूँ जितनी दुकानें गई हैं क्योंकि वो कमर्शियल है, और जो मकान रहायशी गए हैं उसको तो SDRF के तहत 1,30,000 मिलेगा, उससे उनका बनने वाला कुछ नहीं है। इतना करोड़ों का नुकसान हुआ, मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब एक स्पेशल पैकेज बनाए और स्पेशल पैकेज के तहत इनको मुआवजा दे दे, इनको रिलीफ दे दे, जैसे चुसौती में हुआ था हफ्ते के अंदर अंदर उनको वहां पाउडर में रिलीफ दिया गया था। हजारों और करोड़ों की तरफ से NGO और सोशल वर्कर उनकी मदद की थी। क्या ठाठरी के लिए मदद नहीं NGO कर सकते हैं? क्या अबाबील के लोग मदद नहीं कर सकते हैं? क्या रियासत के तमाम लोग, जीशु लोग जिनको अल्लाह ताला ने दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अबाबील से गुजारिश करूंगा, जितने भी NGO से उनसे गुजारिश करूंगा कि ठाठरी में माकूल मदद की जाए। बहुत नुकसान हुआ उनको, गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही है। हमने गुजारिश की थी एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिस तरह से इसको रोकने के लिए कोई कोशिश की जाए। तीसरा हमने एक गुजारिश की थी कि जालूजी माइनिंग की तरफ से हुआ कि किश्तवाड़ को काफी नुकसान होने वाला है, ये जो डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट बने हैं बुरसर पकड़ करसाई किरू, इनकी वजह से भी यहाँ जलजले होने हैं, अर्थक्वेक होने हैं, उसके बाद करोड़ ब्रश होने हैं। उसका दूसरा वाकई ये बोंजवा में भी हुआ, सिंथन टाप में हो, एक नोमेड बकरवाल की 100 बहने, 2-3 घरों की 100 बेटे जो मर गई, नुकसान हो गया जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। लिहाजा मेरी मौदवाना गुजारिश है सरकार से, एक तो 6 महीने का राशन ठाठरी वालों को इस वक्त दिया जाए, और उसके अलावा कम से कम जिनका पूरा मकान गिर गया 10 लाख दिया जाए, बाकी देख के ABC कैटेगरी बना के एक टीम बना के देखा जाए कि किसका कितना तकमीना नुकसान हुआ, उसका पूरा माकूल उनको मुआवजा दिया जाना चाहे, ये मेरी गुजारिश। और जो नोमेड बकरवाल की 100 बेटे बकरियां गई हैं उसको भी कुछ मदद होनी चाहिए। जो SDRF में कुछ चीजें आती हैं कुछ नहीं आती हैं, मगर उसके लिए चीफ मिनिस्टर मजाज है, वो एक स्पेशल पैकेज दे सकता है, ये मेरी मौजवाना गुजारिश है। और उसके अलावा ये रोड को खाली करना जरूरी है, अभी रोड 7वां दिन चल रहा है, आज 8वां, अभी भी रोड पूरी तरह खाली नहीं हुई। नालों को डीप किया जाना चाहे, नालों को वाइट किया जाना चाहे, ताकि आइंदा भी अगर ऐसा वाका हो ताकि पानी को रास्ता मिले। नीचे ईदगाह भी हमारा वहाँ पे तबाह हो चुका है, उसको भी काफी सले से पूरा भर गया है, सड़कें भर गई हैं, दुकानें भर गई हैं, ग्राउंड भर गए हैं, तो इनकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए और इनको माकूल जो है मुआवजा मिलना चाहिए।
1: ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर GM सुरूरी। शरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से, इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर, चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
4: बाबा बस्तानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
5: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
4: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
5: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूडिंग पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
1: शेरवीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। حلقہ وانیگام بالا کے مکینوں نے جموں کشمیر حکومت اور محکمہ مال کے اعلی حکام سے اپیل کی کہ ان کے

0: आराम जरूर करें। किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें।
1: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। समीन अब खबरें नष्ट होंगी। पहले कश्मीरी और उसके फौरन बाद उर्दू में। खबरों के बाद तबसरा पेश होगा।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख तजम्मुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुनशियात के मुतासरीन के लिए मुजव्वजा बहालियाती और समाजी व इक्तसादी मरबूतकारी स्कीम को जम्मू और कश्मीर के एक एक जिले में अमलाने की लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते दर्शन करने वालों की तादाद ने किया 3 लाख का हिंदसा पार। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और जम्मू में MBBS निशस्तों का इजाफा निहायत खुशाइंद, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल का इंतकाल। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मुनशियात के मुतासरीन के लिए मुजव्वजा रिहैबिलिटेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक रीइंटीग्रेशन स्कीम का जायजा लिया। इस स्कीम का मकसद यूटी में मुनशियात का इस्तेमाल करने वालों की बाजाबादकारी और उनकी समाजी मरबूतकारी के लिए एक जामे फ्रेमवर्क कायम करना है। यह स्कीम प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे दाखिला की सदारत में कायम टास्क फोर्स ने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर तैयार की है। LG ने हिदायत दी कि इस स्कीम को कश्मीर सूबे से एक जबकि जम्मू सूबे से एक जिले में अमलाया जाना चाहिए जो मुनशियात से ज्यादा मुतासर हों। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे दाखिला चंद्राकर भारती, LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. मनदीप के भंडारी और महकमे समाजी बहबूद के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज भी मौजूद थे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा सब्र तहमुल, अकीदे और रूहानी तौर तकवियत पाने जैसे अकदार की मुनफरिद अक्कास है। अंग्रेजी रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर के शायशुदा एक तफसीली मजमून में LG ने कहा कि यह यात्रा यकजहती, आपसी रवादारी और एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने का सफर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम लोग इस यात्रा के लिए अपना भरपूर ताउन पेश करते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुख्तलिफ तबकों और अकीदों से ताल्लुक रखने वाले मकामी लोग साल हर साल से यात्रियों का खैर मकदम करते आए हैं और यात्रा के आहसन इनकाद के लिए अपना कलीदी किरदार भी निभा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की निजामत और इसके हजम में काफी बदलाव आया है और वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में यात्रा के लिए बुनियादी ढांचे को काफी तकवियत हासिल हुई और यात्रियों को अब पहले के मुकाबले में मयारी सहूलियात दस्तियाब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान गुफा की अजमत को बरकरार रखने, नीज इस हिमालयी खत्े में हयातियाती तनव को बरकरार रखने की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक के 12 दिनों में दर्शन करने वालों की तादाद 3 लाख के हिंदसे को पार कर गई है। आज सपहर 4 बजे तक मजीद 23,000 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। बेशतर यात्री दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट गए हैं और वो यहां की खूबसूरती और मेहमान नवाजी से मुतमइन नजर आ रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वालों की इतनी बड़ी तादाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा से जुड़े तमाम अहदेदारों, खिदमात फराहम कुनंदगान और रजाकारों की सराहना की है। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 805,335 यात्रियों पर मुश्तमिल 13वां जत्था वादी पहुंचा। इनमें से 1,736 यात्री बालतल जबकि 3,599 यात्री

पहलगाम के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एमबीबीएस की इजाफी 50-50 निशस्तों को नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी मिलने पर सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू और इन दोनों कॉलेजों के फैकल्टी मेंबरान और दीगर अमले को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दो मेडिकल कॉलेजों में 50-50 निशस्तों के इजाफे को जम्मू कश्मीर के तिब्बी मंजरनामे के लिए एक अहम संग मील करार दिया और इसे यूटी में तिब के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के सरकार के अज़्म की अक्कासी होती है। इसी दौरान कई अवामी वफूद ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला से मुलाकात करके

0: पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। यह अमल जो 7 जुलाई से शुरू हुआ है 19 जुलाई तक जारी रहेगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज शोबे कश्मीरी और साहित्य एकेडमी नई दिल्ली के बाहमी इश्तराक से सरकर्दा कश्मीरी अदीब और शायर मरहूम मिर्जा गुलाम हसन बेग आरिफ के बारे में 2 रोजा कश्मीरी सेमिनार का आगाज हुआ। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि इलाकाई जबानों और अदबी रिवायात का तहफ्फुज यकीनी बनाने में जामियात का अहम किरदार होता है। नई दिल्ली मगरबी एशिया में जारी सूरतहाल पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत ने एक बार फिर आबनाए हरमुज से बिलाखलल आवाजाही और महफूज तजारत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज शाम वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि आबनाए हरमुज से बिला रुकावट आवाजाही दुनिया भर के लोगों की इकतसादी सलामती और तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए लाजमी है।
1: जो 2 जहाज जिसपे ये आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उस सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है उस सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है। पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है।
0: रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत ने ईरान के मिशन के नायब सरबराह को तलब करने के बाद एक बयान जारी किया। तर्जमान ने कहा कि भारत ने तेहरान को अपनी तशवीश से आगाह किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कौमी वार मेमोरियल नई दिल्ली से 13 रोजा शौर्य विजय यात्रा नाम के यादगारी मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एक्सपेडिशन की बदौलत लोगों, बिलखसूस नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग हासिल होगा। एक्सपेडिशन का इनकाद करगिल विजय दिवस 2024 की तकरीबात के तनाजुर में किया गया है, और यह रवा महीने की 26 तारीख को करगिल वार मेमोरियल द्रास लद्दाख में इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान 28 मोटरसाइकिल सवार 13 दिनों के अंदर 1900 किलोमीटर का सफर करके भारतीय फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को याद करेंगे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने बारिश के पानी को जमा करके इसे मुअस्सर तौर इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। बकाए हयात में पानी की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने रवां मानसून के दौरान कैच द रेन मुहिम को बड़े पैमाने पर वसत देने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर अजम ने कहा है कि मुहिम के तहत हमें हर एक घर और काम करने की जगह पर बारिशों के पानी को जमा करने और बरोई का लाने के निजाम को दवाम बख्शना चाहिए। उन्होंने कुओं और पानी के रिवायती जखीरों को बहाल करने पर भी जोर दिया। मुल्क का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 आज भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुआ। टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत टेक्स वजीर अजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है, और इस बैन अल-अक़वामी नुमाइश में 130 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 60,000 से जायद बयर्स और नुमाइशकार हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर वजीर ने कहा,
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए, और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात से पाक करने के लिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं। इस मुहिम के तहत अब तक मनुष्यात के खिलाफ काफी पेशरफ हासिल की जा चुकी है, और पुलिस, इंतजामिया और दीगर एजेंसियां इस बिद्दत का मुकम्मल तौर खात्मा करने में कोई भी दकीका फरोगजाश्त नहीं कर रहे हैं। कुलगाम पुलिस ने कुजर कुलगाम में जावेद अहमद डार और बशीर अहमद डार नामी 2 मनुष्यात फरोशों के 1 करोड़ रुपए मालियत के 2 रिहायशी मकानात को अटैच कर दिया है। इन 2 स्मगलरों से 200 किलोग्राम फुकी बरामद की गई थी। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की एक रोजाना हद मुकर्रर की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंचे।

0: मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब 5:30 और गुरूब आफ्ताब 7:43 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। इस वक्त पूरा मुल्क शदीद हीट वेव की लपेट में है। कई रियासतों में दर्ज हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। सड़कें सुनसान दिखाई देती हैं। दोपहर के औकात में बाजार वीरान हो जाते हैं जबकि खुले आसमान तले मेहनत करने वाले मजदूर, किसान और दीगर मेहनतकश तबके सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अस्पतालों में गर्मी से मुतलिक बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ रही है और बिजली व पानी की तलब में गैर मामूली इजाफे ने इंतजामिया के लिए भी नए चैलेंज पैदा कर दिए हैं। ये सूरतहाल सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते गैर मामूली मौसमी हालात का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों की तरह इस साल भी यूरोप के मुतअद्दद ममालिक में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी जा रही है। कई शहरों में दर्ज हरारत ने गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा हुआ है और माहिरीन मौसमियात मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली अब महज एक साइंसी बहस नहीं बल्कि एक तलख हकीकत बन चुकी है। अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी मौसमियाती इदारे भी बारहा इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अगर माहौल के तहफ्फुज़ के लिए मुअस्सर इकदामात न किए गए तो मुस्तकबिल में ऐसे शदीद मौसमी वाकयात मजीद बढ़ सकते हैं। ऐसे नाजुक हालात में जम्मू कश्मीर, खुसूसन वादी कश्मीर, लाखों लोगों के लिए सुकून और राहत का मरकज बनकर उभरी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों सयाह रोजाना कश्मीर का रुख कर रहे हैं ताकि चंद रोज के लिए शदीद गर्मी से नजात हासिल कर सकें। डल झील की ठंडी हवाएं, गुलमर्ग के सरसब्ज मैदान, पहलगाम की हसीन वादियां, सोनमर्ग के दिलकश मनाजिर, दूध पथरी और यूसमर्ग की कुदरती खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ खींच रही है। ये मंजर इस हकीकत का सबूत है कि कुदरत ने कश्मीर को ऐसी आबोहवा से नवाजा है जो आज भी मुल्क के करोड़ों लोगों के लिए राहत का बाइस है। सयाहों की बढ़ती हुई आमद से मकामी मईशत को भी नई जिंदगी मिली है। होटलों, हाउस बोट्स, शिकारों, टैक्सियों, रेस्तरानों, दस्तकारी और खुश्क मेवाजात के कारोबार से वाबस्ता हजारों खानदानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं और कई इलाकों में सियाहत मकामी मईशत की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। कश्मीर की मेहमान नवाजी हमेशा से मशहूर रही है और यही जज्बा आज भी यहाँ आने वाले मेहमानों को अपना गिरविदा बना देता है। ताहम इस खुशगवार मंजर के साथ एक हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगरचे वादी कश्मीर इस वक्त मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में निस्बतन ठंडी है लेकिन मौसमियाती तब्दीली के असरात यहाँ भी वाजह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, मौसमों की बेतरतीबी, बर्फबारी में कमी, ग्लेशियरों का सिकुड़ना, चश्मों के खुश्क होने और बारिशों के बदलते हुए अंदाज ने माहिरीन को तश्वीश में मुब्तला कर दिया है। दूसरी जानिब जम्मू खित्ते में बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और अचानक आने वाले सैलाब के वाकयात इस बात का सबूत हैं कि मौसमियाती तब्दीली किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं रही। सयाहों की बढ़ती हुई तादाद के बाइस बुनियादी ढांचे पर भी दबाव बढ़ रहा है। कई मकामात पर ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। पार्किंग की कमी, कचरे के बढ़ते हुए ढेर और आबी वसाइल पर दबाव जैसे मसाइल फौरी तवज्जो के मुतकाजी हैं। अगर सियाहत को सिर्फ आमदनी का जरिया समझकर कुदरती वसाइल को नजरअंदाज किया गया तो वही कुदरती हुस्न जो आज लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर हो सकता है। इसलिए वक्त का तकाजा है कि हुकूमत और अवाम मिलकर माहौल दोस्त सियाहत को फरोग दें। इसके साथ साथ शजरकारी, आबी जखायर के तहफ्फुज़ और कुदरती वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल को कौमी तरजीह बनाया जाना चाहिए। हकीकत यह है कि आज जब मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी से परेशान हैं तो कश्मीर की खुशगवार आबोहवा उम्मीद की एक रोशन किरण बनकर सामने आई है लेकिन ये नियमत हमेशा बरकरार रहे इसके लिए हमें आज ही से माहौल के तहफ्फुज़, कुदरती वसाइल की हिफाजत और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। अगर हमने फितरत के

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समिन, कुदरती वसाइल किसी भी मुल्क की मईशत, सनती तरक्की, ज़रिए पैदावार और तवानाई के निज़ाम की बुनियाद समझे जाते हैं। पानी, जंगलात, मैदनियात, जरखेज़ ज़मीन, कुदरती गैस, तेल और हयातियाती तनु जैसे वसाइल न सिर्फ मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि कौमी सलामती, गजाई तहफ्फुज और अवामी मयार ज़िंदगी से भी बराए रास्त ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इन वसाइल के गैर मौसर इस्तेमाल, नाकस इंतज़ाम, माहौलियाती तब्दीली, आबादी में इजाफे और गैर कानूनी सरगर्मियों के बाइस इनका ज़िया मुसलसल बढ़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल जाहिर करती है कि कुदरती वसाइल का ये जवाल सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं बल्कि एक संगीन मौशी बहरान की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान में पानी सबसे अहम कुदरती वसाइल में शुमार होता है, लेकिन इसकी दस्तियाबी मुसलसल कम हो रही है। आबी ज़खायर की महदूद सलाहियत, ज़ेर ज़मीं पानी का बेदरीग इस्तेमाल, आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली ने पानी के बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया है। पानी की किल्लत बराए रास्त ज़िरात, सन्नत और तवानाई के शोबों को मुतासर कर रही है, जिसके नतीजे में कौमी मईशत भी दबाव का शिकार है। ज़रई ज़मीनों का जवाल भी कुदरती वसाइल के ज़िया की एक अहम मिसाल है। बेहंगम शहरी तौसी, हाउसिंग मंसूबों, सनती सरगर्मियों, ज़मीन की गैर मनसूबा बंद तकसीम और मिट्टी की जरखेजी में कमी के बायस काबिल काश्त रुकबा सुगड़ रहा है। इस सूरत हाल के असरात ज़रई पैदावार, गजाई तहफ़ और दही मईशत पर नुमाया तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। जंगलात की मुसलसल कटाई भी पाकिस्तान के लिए एक संगीन माहौलियाती और मौशी मसला बन चुकी है। लकड़ी के गैर कानूनी इस्तेमाल, आबादी में इजाफे और जंगलात के महदूद तहफ्फुज के बायस सब्ज रुकबा कम होता जा रहा है। जंगलात में कमी न सिर्फ मौसमियाती तब्दीली को तेज कर रही है बल्कि सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, हयातियाती तनु के नुकसान और ज़रई मसाइल में भी इजाफा कर रही है। तवानाई के कुदरती वसाइल का गैर मौसर इस्तेमाल भी मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। कुदरती गैस के ज़खायर में कमी, दरामदी ईंधन पर बढ़ता हुआ इन्हिसार और तवानाई के शोबे में मौजूद मसाइल मुल्की ज़र मुबादला, सनती पैदावार और कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर कर रहे हैं। तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात मईशत पर इजाफी दबाव डाल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली कुदरती वसाइल के ज़िया को मज़ीद तेज़ कर रही है। गैर मामूली बारिशें, खुश्क साली, शदीद गर्मी, ग्लेशियर्स के पिघलने और मौसमी बेतरतीबी के बायस पानी, ज़िरात, जंगलात और हयातियाती निज़ाम मुसलसल मुतासर हो रहे हैं। इन तब्दीलियों के नतीजे में कौमी मईशत को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। कुदरती वसाइल की आलूदगी भी एक अहम मसला बनती जा रही है। सनती फजला, शहरी कचरा, कीमियाई मादे और गैर महफूज फजले की तलफी के बायस पानी, ज़मीन और फ़ज़ा का मयार मुसलसल ख़राब हो रहा है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में सेहत आमा, ज़रई पैदावार, सनती सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। समंदरी वसाइल भी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। आलूदगी, हद से ज़्यादा शिकार, साहिली माहौलियाती तब्दीली और समंदरी हयातियात को दरपेश खतरात पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी पर असर अंदाज हो रहे हैं। समंदरी वसाइल के गैर मौसर इस्तेमाल के बायस मौशी इम्कानात भी महदूद हो रहे हैं। कुदरती वसाइल के ज़िया का बराए रास्त असर कौमी मईशत पर पड़ रहा है। ज़रई पैदावार में कमी, दरामदात में इजाफा, बरामदात पर दबाव, तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात और माहौलियाती आफात के बायस हकूमती माली वसाइल पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। मुख्तलिफ कुदरती आफात की बहाली पर होने वाले अखराजात भी कौमी बजट को मुतासर कर रहे हैं। सरमायाकारी का माहौल भी कुदरती वसाइल की सूरत हाल से मुतासर होता है। पानी, तवानाई और माहौलियात से मुतलिक मसाइल सनती तरक्की और नई सरमायाकारी में रुकावट बनते जा रहे हैं। जब बुनियादी वसाइल गैर मुस्तकम हो तो कारोबारी सरगर्मियाँ

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, कौमी सलामती और इक्तसादी इस्तेहकाम एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। जदीद दुनिया में किसी भी रियासत की ताकत सिर्फ इसकी फौजी सलाहियत से नहीं नापी जाती, बल्कि इसकी मईशत, माली इस्तेहकाम, सनती तरक्की, तवानाई के वसाइल, तजारती रवाबित और अवामी खुशहाली भी कौमी सलामती के अहम स्तून बन चुके हैं। अगर मईशत कमज़ोर हो तो रियासत को दिफा, तरक्की, सफारतकारी और दाखली इस्तेकाम के शोबों में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान भी इस वक्त ऐसे हालात से गुजर रहा है जहां मुआशी मसाइल और कौमी सलामती के तकाजे एक दूसरे पर नुमाया असरात मुरतब कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता चंद बरसों से मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है। महंगाई, कर्ज़ों में इजाफा, महदूद ज़र मुबादला के ज़खायर, कमज़ोर बरामदात, दरामदी इन्हिसार और सरमायाकारी में सुस्त रवि ने इक्तसादी इस्तेकाम को मुतासर किया है। इन मुआशी मुश्किलात के असरात सिर्फ मालियाती शोबे तक महदूद नहीं रहे, बल्कि कौमी सलामती के मुख्तलिफ पहलू भी इससे मुतासर हो रहे हैं। दिफाई सलाहियत का इन्हिसार भी एक मजबूत मईशत पर होता है। दिफाई ज़रूरियात जदीद टेक्नोलॉजी, सरहदी निगरानी, साइबर सिक्योरिटी और कौमी सलामती के दीगर तकाजे मुसलसल माली वसाइल का मुतालबा करते हैं। जब मईशत दबाव का शिकार हो तो दिफाई अखराजात और दीगर कौमी ज़रूरियात के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। दाखली सलामती भी मौशी इस्तेकाम से बराए रास्त जुड़ी हुई है। बढ़ती हुई बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत और मौशी गैर यकीनी सूरत हाल समाजी बेचैनी में इजाफा कर रही है। जब आवाम को रोज़गार, बुनियादी सहूलियात और माशी तहफ़ हासिल न हो तो मुख्तलिफ समाजी मसाइल शिद्दत इख्तियार करते हैं, जो दाखली इस्तेहकाम पर भी असरअंदाज होते हैं। तवानाई का बहरान भी कौमी सलामती और मईशत के दरमियान ताल्लुक को वाज़े करता है। बिजली और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें, दरामदी तवानाई पर इन्हिसार और तवानाई के शोबे के माली मसाइल सनती पैदावार, बरामदात और कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर कर रहे हैं। तवानाई का अदम इस्तेहकाम इक्तसादी तरक्की के साथ साथ कौमी सलामती के लिए भी एक अहम चैलेंज बन चुका है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी कौमी सलामती का एक बुनियादी जुज़ू बन गया है। पानी की किल्लत, ज़रई मसाइल, मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती हुई आबादी खुराक की पैदावार पर दबाव डाल रहे हैं। ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ अवामी ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है, बल्कि मुआशी और समाजी इस्तेहकाम के लिए भी खतरात पैदा करता है। दहशतगर्दी और सलामती के मसाइल भी मईशत पर बराह रास्त असर अंदाज होते हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस सरमायाकारी, सयाहत, सनती सरगर्मियाँ और तजारती एतमाद मुतासर होता है। जब सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल महसूस करते हैं तो सरमायाकारी की रफ्तार कम हो जाती है, जिसके असरात इक्तसादी तरक्की पर मुरतब होते हैं। सरमायाकारी का माहौल भी कौमी सलामती से वाबस्ता है। सियासी अदम इस्तेकाम, अमन अमान के मसाइल और मौशी गैर यकीनी सूरत हाल मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के फैसलों को मुतासर करती है। यही वजह है कि सलामती और मौशी इस्तेकाम को एक दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता। आलमी जुग्राफियाई सियासत भी पाकिस्तान की मईशत और सलामती दोनों पर असरअंदाज हो रही है। इलाकाई कशीदगी, आलमी तजारती तब्दीलियाँ, तवानाई की आलमी मंडी, बैनुल अक्वामी मालियाती दबाव और सफारती ताल्लुकात इक्तसादी फैसलों और कौमी सलामती के माहौल को मुसलसल मुतासर कर रहे हैं। सामिन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जाहिर करती है कि मजबूत मईशत के बगैर कौमी सलामती के तकाजों को मौसर अंदाज में पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि मौशी कमजोरी के असरात दिफा, दाखली इस्तेकाम, सरमायाकारी, अवामी एतमाद और रियासती खुद मुख्तारी तक फैल रहे हैं। सामिन, इसीलिए पाकिस्तान में कौमी सलामती और इक्तसादी इस्तेकाम एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे पर असरअंदाज होने वाले दो बुनियादी कौमी मौजूआत बन चुके हैं। सामिन, ये तो थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में समाप्त करते हैं एक और नगमा।

मुनासिबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो रابطہ करें। हमारा फ़ोन नंबर है 01942480364। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा कल दिन के 3 बजे से 4 बजे तक और हमारा फ़ोन नंबर है 24803। ये थी एक इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से। ईशा आकाशवाणी श्रीनगर समय कौशर मौसीकी पेश।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत सब 60 करोड़ लूक 5 लक्षन तम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तम बहन करोड़न इलाज सपुद यम सत गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षन करोड़न हज बचत सपुद अस करू आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनयु आयुष्मान कार्ड जानकारी बापत करू 1455555 फोन नंबर पे।

0: ही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को

0: ट्रेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंत

0: अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
1: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहातार हठ अशर हठक मीटर अलाव एफ एम अखतराशारिया 5 मेगाहर्ट्ज़ पेट समय रात 9 बजे पेश कशर मौसीकी।

0: चमड़े और फुटवेयर एशिया पर 16% तक, टेक्सटाइल और कपड़ों पर तकरीबन 12% तक जो महसूल था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदकारों की मुसाबिकती सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए इम्कान पैदा होंगे और आलमी वैल्यू चेन में भारत की पोजिशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी पॉलिसी इसलाह का ऐलान करते हुए कहा है कि अब जरई खाद रिवायती बंद डब्बों की बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट की जाएगी। भारतीय रेलवेज की जदीदकारी से मुतालिक इसलाहात पर आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने उड़ने वाली राख यानी फ्लाई एश के ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी इसलाह का ऐलान किया, जिसके तहत इसे खुले रेलवे वैगन्स के बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रेलवे के वजीर ने मजीद कहा कि कंटेनर पर मबनी नए निजाम से लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान होने वाली धूल की आलूदगी में कमी आएगी। जनाब वैष्णव ने कंटेनर पॉलिसी के तहत मरबूत लाइसेंस निजाम का भी ऐलान किया।
2: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई एश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई एश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई एश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला तनाजे की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करने पर राजी हो गया है। ताहम भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त गुजारों की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें तनाजे से पहले की सूरत हाल बहाल करने के लिए उबूरी हुक्म जारी करने की दरखास्त की गई थी। पहले की सूरत हाल के मुताबिक मुसलमानों को मुकर्रर करदा दिनों में हिंदुओं की पूजा के साथ साथ जुमे के रोज नमाज अदा करने की इजाजत हासिल थी। बेंच ने रियासत को हुक्म दिया है कि वो मजकूरा आराजी से मुत एक खुली जगह फराहम करे ताकि मुस्लिम फरीक जुमे के रोज दोपहर 1 बजे से सपहर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर सके। बेंच ने वाजे किया कि ये इंतजाम आर्जी बुनियादों पर है जब तक के मामले का हतमी फैसला नहीं हो जाता। बेंच ने दोनों फरीकों से तहमुल बरतने की अपील की और इस मामले को इंतहाई हसास करार दिया। भारत कल से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस दो रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उन्वान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारियत की तामीर, इसके तहत यह इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वुजरा समाजी तहफ्फुज को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाबता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी कुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट ऐलामिये को गौर खोज के बाद अपनाया जाएगा। इस ऐलामिये का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनतकशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियाती रोजगार पर तआवुन को तकवियत देना है। इसके अलावा ऐलामिये का मकसद काम की बदलती दुनिया में लचक और पायदार तरक्की को फरोग देना भी है। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मसनूई जहानत नौजवानों के हुनर को मौसर तरीके से निखार सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट से मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने स्किल इंडिया मिशन के तहत समाजी तहफ्फुज पहल के मुख्तलिफ हुकूमती इकदामात और प्रोग्रामों को नुमाया किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR की मुद्दत में 10 दिन का इजाफा कर दिया है। कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बूथ लेवल अफसरान BLO इस महीने की 24 तारीख तक घर घर जाएंगे। इससे पहले यह मुद्दत आज 14 जुलाई को खत्म हो रही थी। कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा 31 जुलाई को शाया किया जाएगा जबकि हतमी वोटर फहरिस्त की इशात 3 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी कमीशन ने यह भी इत्तला दी है कि दोनों रियासतों में 31 जुलाई से 30 अगस्त के दरमियान दावे और एतराजात दाखिल किए जा सकते हैं। شہری

0: हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि ढुलेरा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर 3 माह में कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत का मकसद आइंदा 3 माह में टर्मिनल की तामीर के बकिया काम को मुकम्मल करना और लाजमी लाइसेंस हासिल करना है ताकि परवाजों का आगाज किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर रामचंद्र गौड़ा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने जनाब गौड़ा को कर्नाटक में बीजेपी का एक अहम सुतून करार दिया, जिन्होंने जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने और पार्टी वर्करों की नस्लों को तैयार करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। जनाब मोदी ने सोगवार कुनबे और उनके हामियों से भी दिली ताज़ियत का इजहार किया। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को वसूत देने की जानिब एक अहम कदम के तहत भारत मालदीव आजाद तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। ये बातचीत गुज़श्ता हफ्ते वर्चुअल तौर पर हुई थी। कॉमर्स और तिजारत की वजारत ने कहा है कि तरफ़ैन ने बातचीत के सभी पहलुओं पर खातिरख्वाह पेशरफ्त की और मुख्तलिफ मामलात पर वसी तर इत्तेफाक हुआ है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल तक ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद और कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने मजीद कहा है कि कल तक बिहार में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने रात भर चले सिलसिलेवार हमलों की लहर के दौरान 5 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और उन्हें नाकाम किया। हालांकि दीगर कई मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निजाम में सरायत करने में कामयाब रहे और उन्होंने राजधानी कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन की फिजाइया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने मुल्क भर में 17 मकामात को निशाना बनाया, जिनसे मलबे के गिरने की भी रिपोर्ट है। कीव में हमलों की वजह से 2 गोदामों में आग लग गई और 1 स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि फ्रांस की सालाना वेस्टेल दे तकरीबात में शिरकत के बाद से पेरिस में हैं, ने कहा कि यूक्रेन और उसके बैन अलावामी साझेदार अगले 1 साल के अंदर मुश्तका तौर पर कम लागत वाले और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा सकने वाले दिफाई निजाम तैयार कर सकते हैं। फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास के डेलास स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। ये मैच जीतकर फ्रांस लगातार 3री मरतबा फीफा आलमी कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। दूसरी जानब स्पेन साल 2010 में ट्रॉफी जीतने के बाद पहली मरतबा फाइनल में पहुंचने की भरपूर कोशिश करेगा। क्रिकेट में बर्मिंघम के एजबिस्टन में खेले जा रहे 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 259 रन का निशाना रखा है। जवाब में आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने 22 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 47 ओवर्स और 5 गेंदों में 258 रन बनाए। इंग्लैंड की जानब से जो रूट ने सबसे ज्यादा 76 रन जबकि लियाम डोसन ने 68 रन बनाए। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए। शुभमन गिल की क्यादत वाली भारतीय टीम को आजमूदाकार खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से मजीद तकवीयत मिलेगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। भारत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरी नाहल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले 1 रोजा बैन अलाक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। रात के 9:30 हुए हैं। समय समाप्त करें प्रोग्राम हम कलम एक वक्फे के बाद।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि

0: आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: प्रोग्राम हम कलम के साथ हम एक बार फिर हाजिर। मैं आपका मेजबान मोहम्मद हुसैन जफर। समीन तीन हरूफ से मुरक्कब अदब बारियुल नजर में मुख्तसर माने का हामिल दिखाई देता है, मगर इस्तिलाही तनाजुर में देखने पर इस तीन हरफी लफ्ज का मानवी दायरा वसी से वसी तरीन होने का एजाज नुमाया करता है। इंसान की समाजी, उमरानी, तहजीबी, तमदनी और सकाफती तारीख का शायद ही कोई बाब अदब के वसी तरीन दायरे से बाहर रहा है। इन तमाम मौजूआत पर मुहित होने की बिना पर अदब को बजातौर इंसानी हयात व कायनात का तर्जुमान कहा जा सकता है। अदब के दायरे में आने वाली इसी मौजूआती वसत को पेश नजर रखकर अदब शनास अफराद ने कहा है कि अदब महज तफरी का ही वसीला नहीं है, बल्कि अदब की मौसूमियत से हयात व कायनात के अनगिनत मकासद इबारत हैं। अदब इंसानी जज्बात, ख्यालात, एहसासात, तजुर्बात और मुशाहदात का तर्जुमान होने के मुतवाजी अखलाकी अकदार का भी मुहाफिज रहा है। अदब बसीरत की उस नहायत का नाम है जिसकी वसातत से हसास जौक के हामिल लोग दुनिया और दुनिया की फितरी रौनक को इस हद तक महसूस करते हैं कि उनके दिल में दुनिया के तख्लीकी अमल के तई तहकीक का शौक पैदा होता है। तहकीक के इसी शौक की मुताबत करके एक अदीब दुनिया व माफिया को सिर्फ अक्लो इस्तेदाल से नहीं देखता, बल्कि आलम अकबर से मौसूम कायनात के तख्लीकी अज़ा को आलम असगर से मौसूम अपने वजूद के बातिन में महसूस करता है। इस तरह की गैर मामूली हसासियत के नतीजे में अदीब का बयान इजहार महज गौर व फिक्र का ही खुलासा नहीं होता है, बल्कि हयात व कायनात के रुमूज व असरार उसके आईने तख़य्युल से विजदानी इल्हाम की सूरत पे मुनक्कस होते रहते हैं। कायनात के सरबस्ता हकायक आया होकर अदीब के जहन से यके बाद दिगरे उठने वाली दरियाई लहरों की तरह गुजरते हैं। अदीब इन दिलफरेब असरात को अपने अंदर महसूस करने के बाद दूसरों तक पहुंचाता है कुछ ऐसे लतीफ अंदाज़े बयां में कि लोग उसे कलम के वसातत से कायनात की हयाती नैरंगिया देखते हैं। अदीब का असलूब और तर्ज बयां शायराना हो तो इन हयाती नैरंगियों का हुस्न एजाज दुबला हो जाता है। शेरी अदब से उजागर होने वाली हयाती नैरंगियों की इसी मुस्तजाद लताफत से आशना करने के तई हम कलम के इस नशरियाती शुमारी की वसादत से हमें हम कलामी का शर्फ बख्शने के लिए स्टेडियम में मारूफ अदीब, शायर और अफसाना निगार जनाब अली शहरा साहब तशरीफ फरमा है। आपके साथ शरीक गुफ्तगु हैं शबीर अहमद शबीर।
2: जनाब अली शहरा साहब, प्रोग्राम हम कलम में आपका खैर मकदम है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व
3: रहमतुल्लाह। सामीन को भी हमारी तरफ से इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से खुलूस भरा सलाम पेश है।
2: शुरू यहीं से करते हैं कि शायरी की जानिब आपका रुझान कब से हुआ, किस उम्र में हुआ?
3: मैं काजी गुंड ब्लॉक से ताल्लुक रखता हूँ, गेटवे ऑफ कश्मीर जिसे कहते हैं। एक दरमियाना दर्जे का गांव है, एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक रखता हूँ। तो खानदान में हमारे बाप दादा थे, उन्होंने शायद किसी स्कूल में नहीं पढ़ा था, तो ये जो अदब के साथ ताल्लुक, मैं इसका तायुन नहीं कर सकता हूं कि कब से शुरू हुआ है, क्योंकि मैं ये नहीं दावा करूंगा कि मेरे खानदान में कोई शायर था या कोई अदीब था। लेकिन हमारा घर जो है वो तब भी अच्छे लोगों का मस्कन रहा है, फकीरों, कलंदरों का आना जाना उनका रहता था। तो मेरे ख्याल में ये अदब नवाजी और ये अदब की तरफ रुझान वहीं से शुरू हुआ। घर में जो भी आता था, कुछ लोग उनमें ऐसे थे जो पुरानी मसनवियां पढ़ते थे, खासकर विंटर सीजन में, जो बाद में मुंतकल हुआ मेरे भाई की। हाँ,
2: अच्छा।
3: मेरे भाई साहब भी इस इल्म की तरफ काफी रुझान रखते थे।
2: ये तो सोने पर सुहागा था।
3: तो वहीं से शायद मुझे भी कुछ इशारे मिले, वो काफी

0: मगफिरत करे उन्हें। कहा कि ये आप ही ने लिखा? मैंने कहा जी मैंने। अच्छा। क्या करते हो? मैंने कहा कॉलेज में पढ़ता हूँ, इस तरह सब्जेक्ट क्या ये है वो है। तो उर्दू मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं, लेकिन अच्छा। आपका उर्दू तो सब्जेक्ट है ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, उर्दू से मेरा शगफ है, लगाव है मेरा इसके साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर ये आपका है तो मैं छाप दूंगा। फिर वो तीन बार छप चुका अखबार में, इतना बढ़िया अच्छा था वो।
1: अच्छा।
0: तो उसके साथ मतलब फिर अफसाने भी लिखे, उर्दू अफसाने, रेडियो से नशर हुए, अखबारों में छपते गए, दूरदर्शन से मेरे अफसाने पेश हुए हैं। लेकिन फुर्सत ज्यादा नहीं मिली, शायरी ने मुझे उतनी फुर्सत नहीं दे दी कि मैं नसरी की तरफ ज्यादा जाऊं,
1: दूसरी सिंफ की तरफ।
0: बिल्कुल लिखे हैं, फिर भी लिखे हैं, बहुत से अफसाने लिखे हैं उर्दू में, कश्मीरी में इंशाइया भी लिखी है बहुत। और ये खुशी का मुकाम था कि जब मैं कॉलेज गया, बहुत अच्छे दोस्त भी मिले, और उससे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। खुशकिस्मती ये थी कि पीरजादा अली महमूद अंजनू वहां प्रिंसिपल आए थे नए नए, बहुत अच्छे सुलझे हुए डिसिप्लिन प्रोफेसर, तो उन्होंने वहां एक अच्छा माहौल कायम किया था,
1: अदबी माहौल।
0: अदबी माहौल वहां बिल्कुल महफिलें लगती थी, मुशायरे होते थे, ड्रामे होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज काफी बहुत ज्यादा थी। खुशकिस्मती ये थी कि एक प्रोफेसर शूरिदा काश्मीरी, अपने नाम सुना होगा, अलीगढ़ से पढ़ के आए थे, दरवेशाना तबीयत, तो उनकी सरपरस्ती हासिल हुई। हालांकि वो उर्दू पढ़ाते थे, मेरा उर्दू सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैं लिटरेचर पढ़ने के लिए उनके पास जाता था,
1: वाबस्तगी
0: रही उनके साथ। तो जो कुछ मैं शायद उर्दू में लिख पाता हूँ, जो कुछ भी दिलचस्पी उर्दू के साथ है, वो उन्हीं की देन है। एक और प्रोफेसर गुलामत शाह, अल्लाह मगफिरत करे, दोनों चले गए अब, तो वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे।
1: उनकी शायरी के बारे में मैंने एक बड़ा मजमून लिखा है।
0: वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, लेकिन कश्मीरी के साथ उनको काफी लगाव था, कई जबानों पे, अंग्रेजी पे उनको काफी उबूर था, पर्शियन पे तो उनको 100% उबूर था। उनकी किताब छपी है शब आहंग पोएट्री, शायद मुझे लगता है कि कश्मीर में बहुत कम पर्शियन पोएट्री इस दौर में छपी है, तो लेकिन उनकी बहुत अच्छी किताब छपी है बहुत पहले। तो उर्दू पे तो उनको दस्तरस थी, तो कश्मीरी पे बहुत ज्यादा दस्तरस थी। वो इंचार्ज भी रहते थे, मैगजीन के सरपरस रहते थे, निगरा रहते थे, तो उनसे काफी इस्तेफादा किया। और शायद जब तक वो जिंदा रहे, मेरे एक मेरे आम के साथ रब्ता रहा, क्योंकि वो बीज बहरा के थे, बेसिकली श्रीनगर के थे, लेकिन रहते थे बीज बहरा में। एक और प्रोफेसर थे हिंदी के, प्रोफेसर रतनलाल शांत, अब जानते हैं उनको, कश्मीरी अफसाने में तो उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उनके साथ वाबस्तगी रही, वो भी इंचार्ज रहते थे हमारे मैगजीन के, तो उनसे मैंने इमला कश्मीरी की सीखी पूरी तरह से। कश्मीरी मुझे पूरी तरह से नहीं लिखनी आती थी, तो उन्होंने उसमें काफी गाइड कर दिया। एक और प्रोफेसर मुझे वहां मिले, प्रोफेसर बलजीनाथ पंडिता, जो संस्कृत पढ़ाते थे, वो तसव्वुफ और शिवमत पर उनको काफी उबूर था, बहुत ज्यादा उबूर था, और योगा में उनको काफी उबूर था। वो आधा घंटा योगा करते थे अलग से कमरे में, तो मैंने उनके साथ जान पहचान बढ़ाई, तो मुझे उसमें काफी तसव्वुफ समझने में और शिवमत समझने में, उनके दरमियान जो कुछ कहीं मिलन होता है, कहाँ मिलते हैं ये, कैसे निकलता है तसव्वुफ, इनके डांडे कहाँ मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छे आदमी थे। मैंने उनके साथ बात की तो वो खुश हुए कि आप उस इलाके से हैं जहाँ प्रकाश राम पैदा हुए हैं।
1: अच्छा।
0: उसके बाद उन्होंने प्रकाश काम भी किया, प्रकाश राम पे काम भी किया उन्होंने, बहुत बड़े विद्वान थे। तो और भी कई उस्ताद मिले, तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि कॉलेज में मुझे इस तरह के असातिज़ा मिले, तो ये उनकी देन है।
1: यहीं से आपकी शुरुआत,
0: यहीं से शुरुआत हो गई।
1: माशाल्लाह, आगाज तो अच्छा था,
0: बहुत अच्छा,
1: अच्छा।
0: उन दिनों माहौल भी बहुत अच्छा था, कॉलेज में बहुत अच्छा माहौल था।
1: अच्छा शहदा साहब, ये बताइए कि तब से अवायली उम्र से या अवायली शायराना उम्र के अवायल से आज तक जो दौर गुजरा, इसमें जिन शायरों के साथ आपका वास्ता पड़ा, पाला पड़ा, जिन शायरों को आप जानते हैं, आप किस शायर से मुतासिर हैं?
0: अगर लोकल की बात करें तो लोकल, मुझे बहुत शायरों से पाला पड़ा है, उन्हें मिला, मैं मिल चुका हूं उनसे। सभी से मुतासिर होता है, ये बात नहीं है कि आदमी किसी से मुतासिर नहीं हो जाएगा। कोई भी शायर मिले, किसी भी जबान का आदमी, तो मुतासिर होता ही रहता है। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती ही है। मैं फारूक नाज़की साहब के साथ बहुत करीब रहता था, उनसे मिलने का अक्सर मौका मिलता था, और मैं मिलने के लिए

0: बड़ी संजीदगी से हमें लेना पड़ेगा।
1: अब ये भी एक सवाल उभरता है कि अली शहदा को हम गजल का शायर मानेंगे या नज्म का, क्योंकि अक्सर लोग तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हैं। अली शहदा को क्या कहें?
0: बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन उन लोगों को मैं एक ही जवाब दूं कि शायर शायर होता है। जो शायर होगा वो गजल भी लिखेगा, नज्म भी लिखेगा, रुबाई भी लिखेगा, कत्ता भी लिखेगा, जो उसे मर्जी आए वो लिखेगा। वो दस्तरस एक शायर को हर चीज पे होनी चाहिए। हम बड़े शायरों की बात करेंगे, इकबाल ने तो नज्में भी लिखी हैं, गजलें भी लिखी है, बहरबंद भी लिखी है, अक्सर बहरबंद ही लिखी है। लेकिन ये कहना कि कोई शायर गजल का है या नज्म का है, तो मैं आज तक इस बात का तायुन नहीं कर सका। हालांकि गजल मेरी काफी मरगूब है, मुझे बहुत मरगूब है गजल, और गजल के साथ मुझे काफी लगाव है। लेकिन नज्मे में कॉलेज के दौर से ही लिखता हूँ, उन दिनों भी कॉलेज मैगजीन में छपी, और मेरी हर किताब में तीनों किताबें हैं, चार किताबें हैं मेरी, तीन किताबों में तो नज्में भी छपी हैं और गजलें भी छपी हैं। लेकिन एक किताब में सिर्फ गजलें ही छपी मैंने, लाबला सिर्फ गजलों की किताब है, उसमें कोई एक भी नज्म नहीं है। और उसके बाद जो मेरी किताब आ गई पांचवा मौसम, उसमें सिर्फ नज्में हैं, कोई गजल नहीं है। लिहाजा मैं शायर हूं, जो चाहूं वो लिखूंगा, जिस मौजू को लेके रखूंगा लिखूंगा। अब ये देखना होता है मुझे कि मुझे कहां आसानी हो, कि अगर ये ख्याल मुझे पिरोना है तो क्या मैं गजल में इसे पिरोऊं ठीक तरह से या इसे नज्म में। मैं मौजू के साथ इंसाफ करना चाहता हूं, ना इंसाफी मेरे सामने नहीं है। लिहाजा मैं खुद को गजल का भी शायर कहता हूँ, नज्म का भी शायर कहता हूँ, बल्कि तजुर्बे का भी शायर कहता हूँ। आपको मालूम है मैंने कश्मीरी में भी कई तजुर्बे किए हैं, मैंने यहाँ भी मैंने सतरंगी नज्म भी लिखी कश्मीरी में, पहली बार मैंने एक नया तजुर्बा कर दिया। मैंने गजल में नई किताब आने वाली है मेरी, उसमें गजल की जगह मैंने शजल लिखी है।
1: अच्छा,
0: एक नया तजुर्बा, महज एक तजुर्बा है लेकिन तजुर्बा तो करता हूँ। ये मेरा मूड है कि मौजू कैसा है और मैं उसको कैसे पिरोऊंगा, किन अल्फाज में पिरोऊंगा और किस सिंफ में डाल दूंगा, ताकि इसके साथ इंसाफ हो जाए। अगर मैं ये कहूंगा कि नहीं गजल के साथ मुझे ज्यादा लगाव है, नहीं नज्म के साथ ज्यादा लगाव है, ये मेरे लिए ये बात मुझे पसंद नहीं है कि मैं एक के साथ ज्यादा लगाव करता हूँ, एक के साथ कम लगाव रखता हूँ। मेरे साथ गजल भी मेरा बच्चा है, नज्म भी मेरा बच्चा है।
1: ये मैं इसको कहूंगा कि खुशकिस्मती की बात है कि मुल्क की सतह पर भी आपकी शायरी का मैार, आपकी शायरी का जो मैार है उसका एतराफ किया गया है, और हाल ही में आपको साहित्य एकेडमी का अवार्ड मिला है, वहां से अवार्ड मिला है कश्मीरी शायरी के लिए। क्या महसूस किया?
0: शबीर साहब, मेरी 10 किताबें छप चुकी हैं, उनमें 6 कश्मीरी में हैं, 4 उर्दू में हैं, 3 इस वक्त कंपोज हो रही है, एक की मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ कश्मीरी की, एक उर्दू कंपोज हो रही है और एक उर्दू की कंपोज हो रही है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएंगी। तो बहुत अच्छा लगा जब मेरी पहली किताब आई थी सुंजल कश्मीरी में, वो भी अवार्ड में थी, साहित्य अकेडमी के अवार्ड में, ये मैं आपको बताता हूँ और आपको बाकी जरा ऐसे भी मालूम हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने रखा था, उन दिनों भी मैंने कहा कि जब हो जाएगी, कोई वक्त आएगा जब ये एक्नॉलेज कर देंगे, और किसी को पता ही नहीं चला, मुझे खुद पता नहीं था, मुझे फिर लोगों ने बता दिया कि आपको साहित्य एकेडमी मिल गया। बहुत खुशी हो गई, लगा कि जो मेहनत में कर रहा हूं किसी को ये पसंद आ रहा है। तो आपने सवाल जो किया आपने कि नज़्में ज्यादा पसंद है, मैं आपको एक नज़्म सुनाऊं अपनी पांचवा मौसम किताब से, तो शायद आपको, क्योंकि आपको नसरी नज़्में उतनी ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन मुझे काफी पसंद है। मौसमों के बदलते त्योहार, दुख सुख मौसमों के त्योहार हैं जो हमारे जिस्म जहाँ की गलियों में मनाए जाते हैं। कोई मौसम सब्ज पत्तों के अवराक लेकर आता है तो हमारी पलकों पर लफ्जों के शगुफे खिलते हैं। मौसम प्यासे दश्त पे बारिश छिड़कता है तो हम आंसुओं की जगह शबनम के कतरे लिख देते हैं। नर्म धूप को छूकर धीमी हवाएं चलती हैं तो हम आहों को दुआओं में रंग देते हैं। मौसम बदलते रहते हैं अपने त्योहारों के साथ। मेरी नज्मों के लड़खड़ाते रास्तों की तरह अब्र की गनी वादियों पे नए आसमान खुलते हैं। बिजली चमकती है तो किसी बच्चे की गुड़िया टूट जाती है। रोशनी के थरकते पैरों तले यूं मेरी नज्मों में शिगाफ पड़ते हैं। फिर खिजां का त्योहार आ टपकता है और यहाँ मौसम का जश्न मनाने हम सब चलते हैं। नए मौसम के खलियान में मैंने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए, झांकता रहता हूँ کب برف کی چادر

0: जी दोस्तों, फोन इन प्रोग्राम हेलो, आपकी फरमाइश के साथ आपकी मेजबान सकीना हाजिर हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस वक्त ये शो आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो हस्बे मामूल आज के शो की पहली कॉल लेने से पहले एक बेहतरीन बात आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये कि खुश रहने का राज हमेशा मस्बत रहने में नहीं है, बल्कि वक्त के साथ हर हकीकत को कबूल करने में है। ये कबूल करना कि हर दिन खुशियों भरा नहीं हो सकता, कोई ना कोई दिन परेशानी लेकर या गम लेकर भी आता है। आप गलतियां भी करते हैं, आपकी गलतियां आपका पीछा करती हैं, आपको पछतावे होते हैं, आप नाकाम हो जाते हैं, आपको लोग छोड़ जाते हैं या आपको किसी को छोड़ना पड़ सकता है। सो कहना चाहेंगे कि कोई चीज मुकम्मल नहीं मिलती और यही चीज आपको कबूल करके जिंदगी गुजारनी है। जब आप हर हकीकत को कबूल करके जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी एक इत्मीनान की समत चल पड़ती है। हम भी यही दुआ करते हैं कि आप जिस भी राह से गुजरे, कोई भी काम करें, अल्लाह आपको बरकत दे, खुशी दे और सबसे बड़ी बात इत्मीनान दे और सुकून दे। इसी बेहतरीन बात के साथ हम लेते हैं आज के शो की पहली फोन कॉल। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: सकीना दीदी, ठीक छु? असल पर छु?
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो मुस्किल शामिल छु जनाब, मलिक पुरा तरफ पे फेरोज अहमद खांडे जनाब। आज उसका लगभग चोर कर फोन।
0: शुक्रिया ब्रेक ने बापत पूछा, जल तू ब्रेक छु निवान तुंसी हिविस बेस कंस दोस्तस छु
1: मोक छु मेला बाकी ते जनाब।
0: क्या छु बोजुन आज?
1: मैं बोजुन छु बोन थोड़ा गुनगुना वक्त में बोथा ना।
0: वने वने
1: कभी खुशियों की

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर, प्रोग्राम जारी है। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, आपकी फरमाइश।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: आप सकीना दीजिए
1: बात कर रही हूँ।
2: खुशी हुई कि आज आपके साथ बात हुई।
1: नाम अपना बताएंगे?
2: हम हाजी बुक मागाम से बोल रहे हैं जो अब्दुल अहद।
1: अब्दुल अहद साहब बताइए,
2: आज रफी साहब की एक गीत सुनना है
1: जी।
2: फिल्म थी असली नकली। गाने के बोल है, छेड़ा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना तो गया पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का।
1: वाह,
2: गीत सुनाई दीदी।
1: बहुत ही प्यारा नगमा, रवायत से हटके आज आपने गीत की फरमाइश की है। ये देव आनंद पर पिक्चराइज किया गया है गीत। जब आप गुनगुना रहे थे तो जहन में आ गया कि इस फिल्म में थे देव आनंद।
2: बिल्कुल बिल्कुल, चंद साथी थे, उनका नाम है इकरा इशरत साहिल और है जहूर अहमद गनाई, गुलमर्ग रोड कानिमा से आफ्ताब आलम, और खास मेरा दोस्त है श्रीनगर बिमिना में जो रहते हैं, उसका नाम है संगीर अहमद मटा
1: जी।
2: मंगलवार हम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा तो हम सुनेंगे।
1: बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे लिसनर्स ये कहते हैं कि बेताबी के साथ अपने इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होते हैं।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम यादव बोल रहा हूँ मैडम।
0: तुकाराम यादव जी, आपका शो में फिर से वेलकम करते हैं।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आज आपने महीनों के बाद कॉल किया।
1: जी जी जी,
0: बताइए क्या कर रहे थे?
1: कुछ नहीं, हमारा वर्कशॉप है वेल्डिंग का, वेल्डिंग काम करते हैं, घर के दरवाजे ग्रिल चिड़िया बनाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, काम में मसरूफ रहिए, अल्लाह काम में बरकत दे।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: बताइए तुकाराम जी, किस गीत ने मजबूर किया आज कश्मीर आकाशवाणी श्रीनगर को कॉल करने के लिए?
1: फिल्म का नाम है बॉम्बे टू गोवा और गीत के बोले देखा ना है रे सोचा ना रख दे निशानी पे जान।
0: अमिताभ बच्चन और अरुणा ईरानी पर यह गीत फिल्माया गया था बस में।
1: ओ मैडम जी, वो पूरा शूटिंग बस में हो गया है।
0: हाँ,
1: बॉम्बे टू गोवा से।
0: बिल्कुल, आपके लिए गीत हम पेश करेंगे।
1: मैडम, गोवा को जाने के लिए हमारे गांव से रास्ता है।
0: कभी जाना हुआ गोवा?
1: गोवा नहीं गए, जाने वाला है, इरादा है।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। कश्मीर कभी आए हैं?
1: नहीं नहीं,
0: कश्मीर भी नहीं आए।
1: जाने का इरादा है,
0: हर जगह जाने का इरादा है। चलिए, अल्लाह आपका ये सपना जो है, इरादा जो है, वो पूरा करे। चलिए, दोस्तों के नाम बताना चाहेंगे?
1: जी जी जी, सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: शुक्रिया।
1: हमारे उत्तर विठल पवार जी, सतीश गाड़गे जी, पीएसआई राजशेखर जी, सुनील मोदी जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेड़गे जी, श्रीकांत भंडारे जी, रमेश जाधव जी, उदय काले जी, विजय पाटिल सारोकर जी और धनंजय टेलर जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुकाराम जी कॉल करने के लिए। उम्मीद यही रखेंगे कि आप 2 महीने के बाद फिर से ट्राई करेंगे।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।
2: आई आई आई आई आई आई आई

0: आशिक छे चंगी चंगी हाथ
1: कशिर छे नुंदरिश्त लल्दिन हिन जबान बचे हिचने वो कशिर बोलून तो समझून कशिर छे सठा मीर जबान

0: जी, जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और शो एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, आपकी फरमाइश। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम सकीना दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: ठीक छो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बस गुलाम नबी मला बंडपोर लारवा पोर पे आज वो तो तकरीबन गए मैं 10 बजे ये प्रोग्राम ट्राई करा मगर शुक्र अल्लाह ताला सुन आज गो तसे मुलाकात गुड आज कॉल।
0: चलो सैन खुश नसीबी गुलाम नबी साहब आज लोग तो हुंद नंबर
1: फोन नाम तक पे गो मैं रेडियो कश्मीर बोजा क्या जिद बालिंग गो फर्स्ट का प्रोग्राम से तो रेडियो बोजा खासकर से सकीना दीदी यूस आवाज है बड़ खुश कर।
0: चलो सठा सठा शुक्रिया अमे लोल बापत अमे खलूस बापत
1: आज उस मैं आज को मैं आज गो लगन क्या मैं सकीना दीदी से कत कर कि बस जील वल तोजान ये वन लारवापुर
0: अच्छा
1: यह जील वल गाम कनवु गाम मगर सकीना दीदी अच्छी गई प्रॉब्लम ये अलाक
0: यह
1: किस वलरस नेरान क्या गाड़ी गाड़ मगर यह कौर अल्लाह सद फैसल कि यह गो खत्म क्या वो मलब यह रूद ना सह हिसाब कह आज ब्रो सदी वरी मगर यह लट गमेंटस अपील कि यह कर ड्रैगिंग अच्छा मे तकरीबन 15,000 लास्ट में
0: وچس غلام نبی صاحب تو ون و ات مز اللہ تعالی سن مرضی کی ات ووت مل بہ ہو یہ

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हाँ सकीना बहन, कैसी हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक
1: मेरा नाम बिस्मा है।
0: जी। बिस्मा कहाँ से कॉल कर रही हैं?
1: जवाहरनगर। मेरे भाई की एंगेजमेंट होने वाली है जल्दी।
0: खुशी की बात है
1: जी डॉक्टर अरशद, इन्हीं के लिए मुझे गाना डेडिकेट करना है। वो है ना, हमने सुना है तुमने जीवन साथी चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज वो क्या है?
0: पेश करेंगे आपके लिए।
1: मेरे भाई के लिए, और आप बहन भी मेरे साथ शामिल है।
0: जी जरूर सुनेंगे।
1: ओके जी, सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैम ठीक हो
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: जी? मैं औरनहाल आनंदमार्ग से एजाज सूफी बात कर रहा हूँ।
0: जी एजाज सूफी, बताइए क्या हाल है।
1: बस अल्लाह का करम है।
0: अल्लाह सभी को ठीक ठाक रखे। बताइए एजाज,
1: बिल्कुल जनाब, एक गाने की फरमाइश करनी थी मैम।
0: गीत के बोल बताएंगे।
1: वो फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है,
0: जी
1: तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या के।
0: जी पेश करेंगे आपके लिए।
1: जी मैम, मेरे साथ मेरी सिस्टर है रिफत रशीद और एक बिस्मा रशीद। अलग टाइप की फीलिंग्स आती है जब रेडियो पर अपनी बात सुनते हैं, आपसे कुछ
0: जी
1: गुफ्तगू करते हैं तो मजा आता है।
0: चलिए, एजाज क्या करते हैं आप।
1: जी मैं मेरा वो कार वॉशिंग का पॉइंट है, वही काम करता हूँ मैं।
0: ये अपने इलाके में।
1: हाँ जी मैम, अपना है। जी मैम, मेरी सिस्टर है ना रिफत रशीद और बिस्मा रशीद, वो भी
0: कीजिए,
1: आपके प्रोग्राम शौक से सुनते हैं।
0: कभी उनसे भी बात करवाइए
1: जी मैम, जरूर कराएंगे अगली बार।
0: इंशाल्लाह। तो इस वक्त आप
1: जी
0: अपनी,
1: मैम, आपका बात करने का अंदाजा अच्छा है, आप शेयर करवाते हैं, कुछ भी हो
0: जी
1: मजा आता है।
0: शुक्रिया इस प्यार के लिए, खुलूस के लिए। आप सुनते हैं वक्त निकाल के, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है।
1: शुक्रिया मैम।
0: इस वक्त अपनी पसंद का गीत सुन लीजिए, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाजों में ये गीत है, तुझे याद ना मेरी आई। ये बहुत
1: किसी
0: ही
1: से
0: हिट रहा गीत है ना।
1: बिल्कुल जनाब,
0: चलिए खुश रहिए अपने अपनों के साथ, ये गीत एंजॉय कीजिए, हम भी आपके साथ हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

उम्मीद हम यही करते हैं कि जिन दोस्तों ने आज के प्रोग्राम में कॉल्स की थीं, सभी ने अपनी अपनी पसंद का नगमा जरूर सुना होगा। नए नए दोस्तों को बता दें कि अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपनी पसंद पर कोई भी फिल्मी नगमा सुनना चाहते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को सुबह 11:30 बजे से लेके दिन में 12 बजे तक। टेलीफोन नंबर है 2480364। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे जरूर होगी मुलाकात। जब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए।

आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। शब के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नाश्र होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression

सुबह गई पेशो का सुबह 6:30 पर लाइव मॉर्निंग शो पर हम सुबह समाप्त करें 7:10 पर। प्रोग्राम की मेजबान हैं जहूर अहमद और सकीना रातर। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जोर जहां और ब्रॉडकास्ट होगा 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी 9:00। कश्मीरी मौसीकी पेश होगी 9:30 पर। फनकार हैं सिवांग दोरजे, इनसे आप समाप्त करेंगे कलामे अब्दुल अहद आजाद और कलामे जांबाज। मौसीकार असद अंजुम।

मुदसर मकबूल और साथी छकर त्रो पेश करेंगे सुबह 11:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सपहर 4:30 बजे। बजमिन सवार अस्त होगी 12:40 पर। मेहमान हैं डॉक्टर शहजादा सलीम। मौजू है वर्ल्ड यूथ सिकल्स डे।

पहाड़ी प्रोग्राम सपहर 4 बजे और गोजरी प्रोग्राम रोज की तरह नष्ट होगा शाम 5 बजे। देहाती बाप अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे शाम 6:10 पर। इसमें मामूल की नशरात के अलावा बच्चों की महफिल होगी। फॉलोइंग टू

0: में मार्केट मंत्रा फॉर नाउ गुड बाय
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा दुश्मन।
1: अच्छा लगा ना,
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही वो
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता हूँ। फूलमती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और जो गीत अभी आप

भारतीय प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटी

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में बस आज बस इतना ही। सुर भी आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर, तो छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ और अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से

0: और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ 10वां पेयजल संवाद आयोजित किया। बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। नेपाल और भारत ने कल ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। काठमांडू में नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल और अतिरिक्त विदेश सचिव मुन्नू महावर के साथ बैठक की। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अब से थोड़ी देर बाद टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al-Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा। गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे। एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, उम्र भर दिल को हम मसलते रहे। तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे, जिंदगी सरखुशी जुनू वहशत।

सब उन्हीं रास्तों पर चलते रहे, उम्र भर हम दिल को मसलते रहे, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर उम्र भर हम दिल को मसलते रहे।

ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं है जहां के लिए। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं, मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म है एक बार मुस्कुरा दो।

ऋषिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जब किसी का सपना आपकी आंखों में बस जाए तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को अपना बनाने का नाम है। क्योंकि सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जहां दो दिल एक ही ख्वाब साथ देखते हैं।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दोस्तों, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि भरोसा है जो हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है, और जब किसी का साथ दिल से मिल जाए तो हर सफर आसान और हर खुशी दुगनी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जो हर हाल में एक दूसरे का सहारा बनकर साथ निभाता है। तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, इसमें चेहरे का अपनापन अच्छा लगता है। तुंध हवाओं तूफानों से जी घबराता है, हल्की बारिश का भीगापन अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। यकीनन सच्चा प्यार यादों में नहीं, निभाए गए वादों और हर पल साथ खड़े रहने में बसता है। और जब रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ हो तो दूरियां भी उस प्यार को कभी कम नहीं कर सकती।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ पल शब्दों से नहीं सिर्फ एहसास से जिए जाते हैं। जब दो दिल एक दूसरे के करीब होते हैं तो दुनिया की हर आवाज फीकी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जहां सुकून भी हो, अपनापन भी हो और हर धड़कन में बस एक दूसरे का एहसास हो।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं कि उनकी मौजूदगी ही सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है। सच्चा प्यार किसी एहसास का नाम नहीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले उस रिश्ते का नाम है जहां हर पल सिर्फ और सिर्फ अपनापन और सम्मान महसूस होता है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत लिख दे। वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, उसके दिल में तू मेरे वास्ते उल्फत लिख दे। वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, उन किताबों में बस एक लफ्ज़ से मोहब्बत लिख दे। मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे।

और इस गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदान

0: मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। पंचायती राज मंत्रालय के आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल आउटरीच कार्यशाला कल संपन्न हो गई। कार्यशाला में पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर जानकारी दी गई। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 1-0 से मैच में बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to the question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said that the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to the media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। जब ये दिल किसी को सच्चे मन से चाहने लगता है तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है। और मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि वो बिना कहे भी सब कुछ बयां कर जाती है।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं, उनकी मौजूदगी एक खूबसूरत तोहफा बन जाती है और सच्चा प्यार एहसान का नाम नहीं होता बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले रिश्ते का नाम है, जहां अपनापन, सम्मान, सच्ची मोहब्बत सब कुछ साथ होता है। उसके साथ रहने से हर रात चांदनी और हर पल खास लगने लगता है। प्यार वही है जो साधारण लम्हों को भी यादगार बना दे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब दिल को उसकी अपनी धड़कन मिल जाती है तो जिंदगी की हर राह खूबसूरत लगने लगती है। सच्चा प्यार किसी वजह का मोहताज नहीं होता, बस वो दिल से दिल तक पहुंच ही जाता है। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो हर दिन एक नई मुस्कान और हर पल एक नई खुशी लेकर आता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, कुछ रिश्ते किस्मत नहीं दिल चुनता है। जब किसी की मुस्कान आपकी खुशी बन जाए और उसकी मौजूदगी आपका सुकून, तभी मोहब्बत अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में होती है। सच्चा प्यार वही है जहां दो दिल बिना किसी शर्त के एक दूसरे को अपना लेते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गम गुसारों की बात करते हो, किन सहारों की बात करते हो, हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, क्यों बहारों की बात करते हो। हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, किन सहारों की बात करते हो।

छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, फूल हर रात महकते हैं सिरहाने मेरे, बंद आंखों में मेरी झांकते रहना उनका, शब बनाती है यूं ही लम्हे सुहाने मेरे, जब भी तन्हाई में मैं उनको भुलाने बैठूं, याद आते हैं मुझे गुजरे जमाने मेरे। दोस्तों, मोहब्बत की खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं बल्कि खास लम्हों में होती है जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी उम्र भर की सबसे प्यारी याद बन जाती है, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त से नहीं एहसास से मापा जाता है।

और इसी के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सामने हाल की घटनाओं को लेकर अपनी कड़ी चिंता और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार

की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में चार अहम मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, श्रम बाजार को औपचारिक बनाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने पर चर्चा होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 2-0 से मैच में बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई। मैं हूं एक बार फिर आपके साथ सुरभि। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, जिंदा है सर पे मौत की परछाइयों के साथ। हमसे बिछड़ के भटकेगा हमदम तू देखना, दिल में बसाया है तुझे गहराइयों के साथ। जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो हर एहसास अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। सच्ची मोहब्बत को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आंखें और मुस्कान ही दिल की हर बात कह जाती हैं। प्यार वही है जो हर धड़कन में सुकून बनकर बस जाए।

इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर किसी को ये नसीहत नहीं की जा सकती। कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ, कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ, यार लोगों से मशक्कत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ निभाने का नहीं होता, बल्कि आंसुओं को मुस्कान में बदल देने का नाम है। जब कोई दिल से आपका अपना बन जाता है तो उसकी एक मुस्कान ही हर दर्द को हल्का कर देती है। यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सच्चा प्यार पाने में नहीं बल्कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने में होता है। जो प्यार दिल से किया जाए वो हमेशा इज्जत, दुआ और खूबसूरत याद बनकर दिल में रहता है।

धरती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

104.1 मेगाहर्ट्ज़। सच्ची खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि मासूमियत, मुस्कान और दिल की सादगी में होती है। जब किसी की भोली सी मुस्कान दिल को छू जाए तो हर पल अपने आप में खास हो जाता है। प्यार वही है जो सादगी में भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ढूंढ ले।

0: की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरजाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने गोल दागा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल।
1: CBI has arrested proclaimed offender Shibu Kumar Singh, one of the accused in the Sukanta Ghosh murder case. He was arrested yesterday from his hideout at Raiganj Road in Gorakhpur, where he was allegedly living under the assumed name of Akhilesh Kumar Shahi. According to the CBI, the accused had been absconding for several years and was declared a proclaimed offender in 2016. The CBI said he was apprehended on the basis of human intelligence and technical inputs. After obtaining a transit warrant, the accused will be taken to Kolkata today and produced before the competent court. Spain stormed into the FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in a semi-final at the Dallas Stadium in Texas, US. Now France will face the winner of the second semi-final between Argentina and England, scheduled to be held at Atlanta Stadium on Wednesday at 12:30 p.m. Indian time. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of 3-match ODI series at Edgbaston in Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 4 in 45.2 overs. Akshar Patel was adjudged player of the match. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, रात की इस खूबसूरत शांत और सुकून भरी बेला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम को इस बेहतरीन से नगमे के साथ।
1: ये रातें, ये मौसम।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इन्हें जितनी बार सुनिए, हर बार ये दिल को नई ताजगी दे जाते हैं। और अब पेश है एक और अनमोल धुन, जिसमें प्यार की मासूमियत और संगीत की मिठास दोनों साथ चलते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। दोस्तों, रात धीरे धीरे और भी हसीन होती जा रही है और इसी खूबसूरती को संगीत के रंगों से सजाने का सिलसिला हम और आप मिलकर कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसके बोल और धुन आज भी हर उम्र के श्रोताओं को पसंद आते हैं।

0: का बहाना।
1: कितना सुकून मिलता है ना जब ये पुराने गीत कानों में घुलते हैं और यादों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक ऐसे ही शानदार गीत की तरफ।

दोस्तों, रात अब अपनी पूरी रौनक पर है और हम भी इस सफर में आपके साथ हैं। दोस्तों, पुराने गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि जिंदगी के कई खूबसूरत एहसासों को भी अपने साथ लेकर आते हैं। और अब पेश है एक ऐसा गीत जो मोहब्बत की सादगी को बहुत खूबसूरती से बयां करता है।

दोस्तों, संगीत कभी पुराना नहीं होता, बस वक्त बदलता है। लेकिन अच्छी धुनें हमेशा नई सी लगती हैं। और इसी एहसास के साथ चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

दोस्तों, पुराने गीतों की एक खास बात होती है कि ये कभी शोर नहीं मचाते, बल्कि धीरे धीरे हमारे दिल में उतर जाते हैं, उन यादों की तरह जो हमारे दिल के किसी कोने में छुपी हुई हैं। दोस्तों, चलिए अब पेश है कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, यादें अक्सर किसी धुन का सहारा लेकर ही लौटती हैं और यही वजह है कि पुराने गीत हमेशा हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, हमारे लिए बहुत खास होते हैं। तो आप सुनिए कार्यक्रम की अगली शानदार प्रस्तुति।

दोस्तों, रात का ये सफर अब आगे बढ़ रहा है और संगीत की मिठास भी। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, अगला और आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को इस कार्यक्रम हमराही से विदा दीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले कार्यक्रम अरुणिमा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उपमिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि यह पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसने बरसों से संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। आइए उस गीत को सुनते हैं।

वाह क्या मधुर गीत था। दोस्तों पुराने गीतों की यही तो खासियत है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन इन गीतों की मधुरता कभी नहीं बदलती। हर शब्द हर धुन हर एहसास सीधे दिल तक पहुंचता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। ये गीत अपनापन जीवन की सरल भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। आइए बढ़ते हैं उस गीत की तरफ।

दोस्तों, पुराने दौर के संगीतकारों ने जिन धुनों को रचा, गीतकारों ने जिन शब्दों को गढ़ा, वे आज भी उतने ही ताजा महसूस होते हैं जितने उस वक्त थे। यही वजह है कि पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन इन गीतों का जादू कभी भी कम नहीं होता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही बीते दिनों की मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं।

दोस्तों सचमुच संगीत भावनाओं की ऐसी भाषा है जिसे हर दिल समझता है। पुराने दौर के संगीतकारों ने धुनों में जो जादू भरा, वही जादू आज भी हर पीढ़ी को अपनी तरफ खींच लेता है। लीजिए, अब पेश है कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

दोस्तों, संगीत की यही खूबसूरती है कि ये बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। हर धुन एक नई कहानी सुनाती है और हर गीत किसी ना किसी एहसास से जुड़ जाता है। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

दोस्तों, रात की इस पहर में जब कोई मधुर धुन कानों में उतरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। और इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम के अगले गीत के साथ।

दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, लेकिन दिन का या रात का कोई भी पल हो, अगर कुछ वक्त के लिए अच्छे संगीत के साथ बिता लिया जाए तो मन फिर से तरोताजा हो उठता है। आइए इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, कहीं प्रेम की, कहीं बिछड़ने की, कहीं उम्मीद की, तो कहीं जीवन को मुस्कुराकर जीने की। और कहते हैं कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता। यही कारण है कि वर्षों पहले बनी धुनें आज भी उतनी ही ताज़ा लगती हैं और हर बार सुनने पर एक नया एहसास दे जाती है। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, पुराने दौर का संगीत सादगी, मधुरता और भावनाओं का सुंदर संगम था। हर धुन में अपनापन था, हर बोल में जीवन की कोई ना कोई सच्चाई थी। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो अपने शब्दों और संगीत से दिल को छू लेता है।

दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को दीजिए अलविदा। मुलाकात होती है आपसे अगले घंटे।

0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरु मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम के एस्बेस्टेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम भोर सुहानी, जहां बातें होती हैं दिल की, मुस्कुराहट की और जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने की। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। आज हम साथ रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस कुछ प्यारी बातें, कुछ खूबसूरत गीत और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज दौड़ती है कि हम खुद से बात करना भूल जाते हैं, लेकिन आज का ये सफर उसी भूली हुई बातचीत के नाम है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए और शुरू करते हैं एक खूबसूरत सोच के साथ। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। कल कैसा था उससे ज्यादा जरूरी है कि आज आप क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खूबसूरत गीत के साथ, जो जिंदगी से पूरी तरीके से भरा हुआ है।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है या ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे कितनी जल्दी मुस्कुरा देते हैं? उन्हें महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं होती, बारिश की एक बूंद, तितली या फिर मिट्टी में खेलना उन्हें बस इतनी सी बात खुश कर देती है। शायद हम बड़े होते होते खुश रहने की वजह बहुत बड़ी बना लेते हैं। आज कोशिश कीजिए एक छोटी सी खुशी ढूंढने की। किसी अपने को कैसे हो पूछ लीजिए, या थोड़ा सा आराम करिए, या फिर आईने में खुद को देखकर कहिए, मैं ठीक हूं, मैं बहुत आनंद में हूं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर इंसान अपनी जिंदगी की किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है, इसलिए जब भी मौका मिले थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ी इज्जत दीजिए और सबसे जरूरी थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार हमारी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है, है ना? ठीक इस खूबसूरत गीत की तरह जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।